0: हम अपना संदेश जो आज बबली जी हम सबको सुना रहे हैं कि किस प्रकार से बर्तन और पर बबली जी इसमें मैं अभी मेरा दिल नहीं भरा ये सवाल से, क्योंकि जो भारत में जो कली कहलाते हैं ना, जो जो बर्तन को और चमक दे देते हैं, तो ऐसा शांता जी आपको ख्याल होंगे कि अगर आप कोवला क्रीक कभी गए, पोवाका गए, तो हमारे जो जंगल वाले जो वासी होते थे तो उन लोग का बर्तन एकदम भी चमाचम होते थे, ऐसा है कि ना?
1: हाँ, उसमें हम न जाने वो सब के इस तरह से बर्तन साफ करते थे, जंगल में जो क्रियोल रहते थे ना, वो सब इतना अच्छे से अपना बर्तन नदी के किनारे जाकर और सिर पर धर कर वो नदी किनारे जाकर और वो बर्तन माँजते थे। एक बात मैं बताऊँ, आप बर्तन माँजने के बात करते हैं, शहर में मेरी फ्रेंड के घर एक ऐसे ही व्यक्ति जो गई थी वहाँ पर इंटीरियर हेल्प थे ना, आज जो जो कहते हैं हेल्प इन हाउस होल्डिंग, तो वो जो हेल्प इन हाउस होल्डिंग था तो एक बर्तन वो पाई साफ करने के लिए, तो उसका रंध जो था जाने स्पेशल रंध रहे जो आप आगे पे धर दे और ना बहुत ना काला होए, वो व्यक्ति जो उसके पास घर में काम करते वो साफ कर करके एकदम से निकाल दी क्योंकि उसका आदत थी ना सब कुछ एकदम चमकना चाहिए बर्तन। हाँ, तो वो जब काम पे से घर पे गए तो देखे उसका बर्तन वाकई में अंदर से और बाहर से दोनों चमक गए
0: पर वो जरूरत नहीं था,
1: वो जरूरत
0: ऐसा होता है ना कभी कभी, जब पैंट आया, जो फटा हुआ पैंट आया, फटा हुआ शर्ट आया, तो घर पे बच्चे खरीद करके पैंट और शर्ट लेकर आए। हाँ। कितना मंगा भर के, और माता पिता जो नहीं, पिता तो उस पर ध्यान नहीं देते पर माँ सोचते कि चलो इसका पैंट फटा हुआ है सी देते, और जबकि वो फैशन था। और इसी प्रकार से जैसे कि, पर ये प्रश्न मेरा अभी बाकी है शांता जी, अभी आपने उसके बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कहने वाले थे कि किस चीज़ से वो बर्तन को कली देते थे।
1: आप जानते हैं गूगल मरहाज जो हमारे पास है, जो इस वर्ल्ड वाइड में है ना, तो गूगल मरहाज से अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो उस पर आप खोज लो, और इस तरह मैंने भी खोजी तो हमने पाई कि कली जो बबली जी कहते हैं साफ करता है तो वो स्वाफल सूर है,
0: स्वाफल सूर कहलाते हैं, और उससे चमक धमक हो जाता था बर्तनों का
1: जी।
0: तो ये खेमिस प्रोडक्ट है ना?
1: हाँ, तो खेमिस प्रोडक्ट तो है,
0: और उसे चमक धमक हो जाता था, यानी कि कली कर देते थे अपने बर्तनों को,
2: यानी बर्तनों में भी नई जान आ जाती है, कली कर दो
1: जी,
0: नई जान आ जाती है।
2: हाँ जी
0: बबली जी, अभी आपको कुछ और भी संदेश हम सब के लिए रखना था।
2: हाँ जी जरूर, अब हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
1: हाँ जी,
2: स्टील के बर्तन,
1: स्टील का बर्तन जी,
2: जो आजकल सब ज़्यादातर मंदिरों में घरों में इस्तेमाल होते हैं, स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते। हाँ। क्योंकि ये ना ही गर्मी से क्रिया करते हैं और ना ही अमल से, इसलिए नुकसान नहीं होता। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो नुकसान भी नहीं पहुंचता, दोनों बराबर रहते हैं शांता जी,
1: बराबर एकदम। हाँ,
2: अब हम आगे चलते हैं एल्युमिनियम के बर्तन।
1: हाँ,
2: एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है।
0: तो एल्युमिनियम बॉक्साइट बोले तो बॉक्साइट।
1: हाँ।
0: हाँ, तो उसके और बढ़ने से, क्योंकि सूरीनाम में तो बहुत सालों तक और बॉक्साइट का और निकाला गया, और एल्युमिनियम यानी कि पहले जो खास करके फ्लिक्टॉय होते थे ना, हवाई जहाज सब एल्युमिनियम के बनाया जाता था। आजकल तो क्यों कुछ फ्लिक्टॉय है जो कंस्टॉफ को बनाया जाता है, और एल्युमिनियम एक का बोले मेटल सोर्ट है, धातु है ना।
2: और ये भी शांता जी, और ये जो कुकर है भारत में, कहते गैस की बचत हो, खास की बचत हो। हाँ। तो जो प्रेशर कुकर है, दाल उसी में बनती ज़्यादातर, वो भी एल्युमिनियम तो
1: जी।
2: हाँ जी,
0: तो एल्युमिनियम की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना शांता जी का जो पिटारा से निकाला है वही गीत और चला देते हैं।
2: हाँ जी जरूर।

सुंदर सुंदर गीत सुनने वाला आपके लिए यहाँ सेलेक्ट करके रखी हूँ। और संजय जी जो मैंग पनेल के पीछे है और आपके लिए चला देते हैं सुनने के लिए, साथ ही साथ हम भी यहाँ सुन रहे हैं। और आपको हार्दिक से स्वागत है एक बार फिर यहाँ पर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जो ज्योति का प्रकाश आपकी सेवा में है।

0: ब्रेक के बाद बबली जी उपस्थित हो गई है और आगे हमको सुनाएगी बर्तन के बारे में, कौन सा बर्तन में खाने से उसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। बबली जी
1: जरूर शांता जी, अब मैं आप सबको बताऊंगी एल्युमिनियम के बर्तन।
0: एल्युमिनियम के बर्तन,
1: हाँ जी, एल्युमिनियम बॉक्साइट का बना होता है। इसमें बने खाने से शरीर को सिर्फ नुकसान होता है, यह आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है।
0: इतने सारे हानिकारक शरीर में,
1: हाँ जी,
0: एल्युमिनियम के बर्तन में।
1: और इसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, बात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं।
0: हल्लो कल्लो बात।
1: एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर से खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी 87 शांता जी।
0: इसके बारे में मैं सुनी हूँ कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने से उसमें जो विटामिन है खाना का, उसका नुकसान होता है।
1: खाना जल्दी तो बन जाता है,
0: हाँ,
1: लेकिन
0: हानिकारक है
1: कि उसके जितने भी पोषक तत्व है सब नष्ट हो जाते हैं।
0: आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन है?
1: हाँ जी
0: है। और इसके बाद आप जो पढ़ के सुनाई है हमको, इसके बाद आप इस्तेमाल करोगे? ये प्रश्न हो जाता है।
1: है शांता जी, हाँ। दाल उसमें अच्छी बनती, मैं खाली दाल बनाती हूँ और कुछ नहीं बनाती।
2: पर कहने की तात्पर्य ये है शांता जी, इस बात को सुनकर मैं भी बहुत हैरान हूँ, क्योंकि पहले सूरीनाम में जब शुरुआत में, जब हम लोग के समय पे,
0: हाँ?
2: और नौकरी मिलता था तो सबसे पहले एगो एल्युमिनियम के और एटन्स बक खरीदा जाता था ना,
0: हाँ, ब्रोथ्रोमल
2: घट, हाँ,
0: हाँ।
2: तो सभी के उसी प्रकार से एल्युमिनियम के बाकी होते थे,
0: हाँ?
2: और पर उसमें हम लोग सब दिन उसे प्रयोग किए हैं,
0: हाँ?
2: और बबली जी कुछ कहने वाले हैं?
1: मैं कह रही थी भारत में भी पहले सबसे पहले एल्युमिनियम के ऐसे आई टिफिन लोग लेके जाते थे,
0: हाँ, हाँ।
1: पीतल के चले, फिर स्टील के चले, आजकल तो जिसमें खाना गर्म रहता है आजकल वो चलते हैं ऐसे।
2: तो कहने के तात्पर्य यह है कि उसमें अगर जब गर्माएंगे तो, और यानी कि उससे शायद कुछ हो सकेगा, पर ज़्यादा तादाद में पहले तो एल्युमिनियम का,
1: हाँ, भारत में भी इस्तेमाल करते थे। शायद जो पतीला हो उसमें बनाने से होगा, खाली टिफ़न में रखेंगे उससे नहीं होगा
2: ऐसा। तो आगे के क्या संदेश है? कहने के तात्पर्य यह है जो हमारे खोजी सेना है, जो खोज करके और रखे हुए है, तो उस पर हम लोग उनको थोड़ा से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जरूर ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें हमारी खोजी सेना खोज करके और संदेश को रखते हैं और हम सब इसे और जरूर,
0: हाँ, और जरूर
2: प्रस्तुत करते हैं,
0: हाँ ना। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब बली जी ने कहा कि पहले बर्तन सोना का, पीतल का, चांदी का, लोहा का, हैंडलर्स जो हैं, मेरे ख्याल से और देख रही हूँ, सोचती हूँ आसान करने के लिए और बेचने के लिए तो ये एल्युमिनियम के इस्तेमाल की है। आज के दौर में भी जो हम दुकान में जाते हैं, देखते हैं और रिक्लाम भी देखते हैं, तो जो लोहा का हरिया है, पीतल का जो पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे, वो सब फिर वापस आ रहे हैं,
2: धीरे धीरे बिल्कुल वापस आ रहे,
0: हाँ,
2: हैं,
0: हाँ, वो सब वापस आ रहे हैं,
2: लोहा का भी,
0: हाँ। तो ये हमारे समझ में नहीं आता कि क्यों सब ऐसे करते हैं, पैसे के लिए करते हैं तो कितना हानिकारक होता है समाज और लोगों के लिए।
2: जरूर। और आगे का संदेश क्या है बबली?
1: हाँ जी, आगे क्या है? मिट्टी के बर्तन शांता जी,
2: आजकल तो मिट्टी का बहुत चल पड़ा ना,
0: मिट्टी का बर्तन भारत में, और हम देखें तो तुर्कैये में, मारोको में वो सब मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं।
1: भारत में भी शांता जी, पंजाब, हाँ, में अपनी नानियाँ जाते थे
0: जी,
1: तो मिट्टी के बर्तन में ऐसे एक हंडिया थी उसमें वो दाल चढ़ा देते थे, हाँ, मेरी नानी, और मिट्टी के बर्तन में ही वो जाता दूध चढ़ाते थे और दूध एकदम गुलाबी हो जाता था,
0: हाँ, उसका रंग उसमें आ जाता ना, हाँ, या
1: घड़े तो होते
0: से,
1: मिट्टी,
0: हाँ,
1: के देखो जिसमें पानी भर के रखते हैं,
0: हाँ,
1: वो तो मिट्टी के हैं,
0: और जो उस मिट्टी के घड़े में पानी जो ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि आइस कास्ट कूल कास्ट
1: जैसे। हाल में फ्रिज नहीं आए थे तो तब घड़े में सब पानी भर के रखते थे।
0: हाँ देखो ना,
1: हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी घड़े होते थे।
0: हाँ,
1: तो जब जिसको प्यास लगी तो वहाँ पर जाके पानी पी लो।
0: तो सोचो ना, पहले कितना आसान से और कितना आसान तरीका से सब इस्तेमाल होते थे, और जो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा था, और इसमें कितना बदलाव आ गए धीरे धीरे। और फिर से जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, आज धीरे धीरे वो सब फिर से इस्तेमाल करने लगा है। इस बात इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ ना, टॉयलेट पॉट जो है, हाँ, भारत में सब ऐसे नीचे बैठे ना कुकुर मुकुर ऐसे, हाँ, जो आज के दौर पर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, तो हमारा शरीर जो है, गोड़ जो है, वो कुकुर मुकुर बैठने के अब थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। तो पहले ऐसे बैठ के, जाने जिस भारत में सब बैठ के शौचालय करते हैं, तो पेट एकदम से साफ हो जाता है। और यहाँ पर टॉयलेट पॉट बना दी है कि बैठकर ऐसे बैठकर शौचालय करो। तो अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि शौचालय जो होता है ना, वो पूरा तौर से नहीं निकलता है, साफ नहीं, पेट साफ नहीं होता है। अब विज्ञान लोग भी अब कहते हैं, जो भारत में जैसे लोग पहले बैठे थे, आज में बैठे हैं, वैसे बैठकर शौचालय करो।
1: जो आजकल है ज़्यादातर शौचालय, तो ऐसे दो ऐसे पत्थर होते थे शांता जी।
0: हाँ हाँ, अच्छा हाँ।
1: तो वो पत्थर का ही था, मिट्टी का बना हुआ।
2: चलो, हाँ। ये कार्यक्रम में हम जोड़ देते हैं गीत जो, और और कहीं हम भटक ना जाए अपने विषय से।
0: नहीं नहीं, भटके के बात नहीं है, बल हम ये इस पर ये कहना चाहती हूँ, पुराना तरीका से जो हम जीते थे उस समय पे, और आज में नहीं बल्कि कितने सालों से ये नई तरीका जो लाई है, और विज्ञानी लोग इसमें देखे नहीं कि पुराने जो है वो सही है।
2: और इसमें ये भी होते थे शांता जी, कहने के है कि आजकल देखो तो कितने लोगों के घुटनों का भी दर्द होता है ना, यानी कि स्पीर जो कनी आदि के
0: जी,
2: तो उसका भी शायद उसका भी कारण होगा कि कुछ जो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं।
0: आप सही है संजय जी, आप सही है। हाँ, हम प्रयोग नहीं करते, हम तो चेयर पे बैठ जाते हैं, बांगस्तर पे कूद के बैठ जाते हैं। अरे बांगस्तर पे भी कूद के बैठो तो पलटी मार के बैठो, ताकि जो बैठने के जो आसन है ना वो भी हो सकता है। पर या किस किस को मैं संभालूँ,
2: किस किस को हम संभालूँ। हम चलते हैं गीत के ओर, और गीत का बोल है कि रोटी कैसन रोटी किस प्रकार के होते हैं, सिर्फ गोल गोल होता ना?
1: रोटी गोल भी होती है, फीरकान भी होती है, पराठा कह लो उसको, और ऐसे एक त्रिभुज भी होती है, जैसे पिरामिड की तरह।
0: हाँ,
1: रोटी जैसे मर्जी बना लो,
0: रोटी जैसा मर्जी बना।

0: कि रोटी किस प्रकार के होते हैं और रोटी के ओर बढ़ने से पहले नहीं, रोटी के ओर बढ़ेंगे नहीं बबली जी, क्योंकि अभी तो बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है ना।
1: हाँ जी, मिट्टी के बर्तन,
0: मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ और संदेश है।
1: हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते सुनने वालों, मिट्टी के बर्तन। शांता जी,
2: जी हाँ, मिट्टी के बर्तन।
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं।
0: शांता जी, हम लोग सूरीनामा में मिट्टी के बर्तन होते थे। वैसे तो मैं खाना बनाता नहीं था और पर खा लेता था, पर मिट्टी का बर्तन मुझे नहीं ख्याल है।
2: मुझे भी नहीं,
0: सूरीनामा में ऐसा नहीं होते थे, वही बस मिट्टी का दिया आदि बनाया जाता था
2: जी,
0: पर
2: मिट्टी का बर्तन
0: नहीं जानी।
2: कलाई के बर्तन
0: तो होते थे और प्लास्टिक आदि का भी,
2: लोहा अल्मीनियम मिट्टी।
1: भारत में शांता जी,
2: हाँ जी,
1: मैंने देखा है शहरों में लोग नहीं इस्तेमाल करते थे मिट्टी के बर्तन, लेकिन गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। हम अपनी नानी यहाँ जाते थे, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दाल बनती थी, दूध गर्म करते थे, मसाला पीसना है, सब मिट्टी के बर्तनों में होता था। और गाय भैंस को पानी वगैरह देना है, सब मिट्टी के बर्तन में होता था।
2: तो गांव के रहने वाले तो बहुत से तंदुरुस्त रहते थे।
1: हाँ, और दूध भी लोना है, छाछ सब कुछ बनता है, वो भी
2: मिट्टी के घड़ा में,
1: और पानी में घड़े में पानी रखते थे कि ठंडा रहे। सब कुछ मिट्टी के बर्तन। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं शांता जी।
2: हाँ जी,
1: मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है।
2: देखो
1: कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं, और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग से स्वाद भी आता है। पानी पीने के पात्र में विशेष में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जल पात्रम तु तमस्य तद्भावे मृदहितम पवित्रम शीतलम पात्र रचितम सफ्टिकेन यत कांचेन रचितम तदत वैज संभवम। अर्थात पानी पीने के लिए तांबा, साफ्टिक अथवा कांच मात्र का उपयोग करना चाहिए, संभव हो तो वैजल जड़ित पात्र का उपयोग करें। इनके अभाव में मिट्टी के जल पात्र पवित्र व शीतल होते हैं। टूटे फूटे बर्तन से अथवा अंजलि से पानी कभी नहीं पीना चाहिए।
0: ये भी आपने सुने और हमारे संदेश जो रखा गया कि किस प्रकार से कितने बर्तनों का अपप्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से आप उसे प्रयोग करें तो आपके लिए हानि या लाभ क्या है, उसमें और बातचीत किया गया। शांता जी, अभी तो बात ये है
2: जी
0: कि जैसे कि हम लोग मिट्टी का बर्तन सूरीनाम में नहीं जानते हैं
2: ना,
0: एल्युमिनियम के तो हम लोग खूब तादाद में जानते हैं, क्योंकि अल्मीनियम के न सिर्फ वो जो ब्रोथ ट्रॉमल होते थे और भी बर्तन आदि होते थे ना, कुछ मेरे ख्याल से।
1: हाँ, पतीला, कढ़ाई, सब कुछ अल्मीनियम।
0: जो एक कढ़ाई जो है सूरीनाम में जो बनाया गया, जो नीचे में गोल सा होता है, वो ज़्यादा तादाद में सूरीनाम में बनाया जाता ना, अल्मीनियम का।
2: हाँ, सूरीनाम से जब यहाँ पे निवासी, सूरीनाम के निवासी जो भी यहाँ आए ना, तो वो भी वही कढ़ाइया जो कहते हैं ना।
0: हाँ, कोफर में पन ले ले आए थे।
2: हाँ, वो सब लेकर आते थे, तावा भी लेकर आते थे, ऐसे कई कई चीज़ें जो सब वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, और अपना सुविधा के लिए तो वहाँ पर सेल्फ भी लेकर आई है।
0: अपने सुविधा के लिए वहाँ से लेकर आए, और यहाँ पर क्योंकि वो इस प्रकार से बनाया गया है, क्योंकि सूरीनाम में जो चूल्हा होते थे ना, तो उस पे एकदम आराम से वो बैठ जाते थे, उसी माध्यम से मेरे ख्याल से वो बनाया गया वहाँ।
2: जाने ग्वेंती एगो ग्वेंती ना कि वो सब में बनावे के, और यहाँ पर आकर दूसर तरीका से बनाना, दूसर कढ़ैया हड़िया में बनाना, तो आसान नहीं लगते थे और स्वाद भी नहीं आते थे उससे, इसलिए सब वहाँ पर से जैसे सब ग्वेंती ना ग्वेंती, इसलिए वहाँ से सप्लाई।
0: तो शांता जी जो आप कह रहे हैं ग्वेंती थे और लेकर के आए यहाँ पर, पर देखा जाए कि हमारे देश में तरक्की हो रहे हैं और कुछ समय बाद तो सिर्फ यहाँ इंडक्शन से खाना बनाया जाएगा, तो वो कढ़ाइया यहाँ प्रयोग हो पाएगा?
2: वही तो दुखद की बात है, तो कढ़ाइया तो अब यहाँ पर सब इंडक्शन हो गए, तब सब कढ़ाइया कष्ट में रहता है।
1: नहीं शांता जी, काशी में नहीं जाएगी, आजकल तो चूल्हे आ गए हैं।
2: ओ हाँ,
1: वैसे मैंने देखा है, नहीं कहाँ देखा था, पता नहीं टीवी पे देखा है कि बने बनाए चूल्हे हैं, ऐसे लोग रख लेते हैं अपने घर में और उसके ऊपर खाना बनाते हैं।
2: इलेक्ट्रिक?
1: ना ना ना, वैसे ही है।
2: ओ, गैस से?
1: हाँ
2: हाँ।
1: अरे इलेक्ट्रिक है कि क्या है पता नहीं, मैंने कहाँ देखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, देखे है मैंने।
2: हाँ वो भी हो, हाँ सच में संजय जी की ऐसे नहीं कि वो सब कास्ट में रह जाते हैं ना, पर प्रयोग कर सकते हैं। कितने तो घर में महंगे से महंगे किचन सेट बना कर धरते हैं और पाछे में एक अलग सा किचन बनाते हैं और वहाँ पर खाना बनाकर और सब गलाकर घर में धरते हैं।
0: ऐसा होता है?
2: ऐसा होता है भी।
1: कोई कहते मसाला लग जाएगा, टाइल्स खराब हो जाएंगे
2: जी,
1: तो मसाला है अंदर में नहीं खाना बनाते?
2: नहीं नहीं, स्पेशल सब बाहर बनाते हैं, स्क्यूर में, स्क्यूर में सब खूब सजा देते हैंगा और किचन वहाँ बना देते हैंगा, तो वहाँ पर पका कर और डोसा जो छोंकता है और ऐसे ऐसे खाना।
0: चलो चलो थोड़ा सा गीत सुन लेते हैं।

0: एक रोटी दे दे, ये फिल्म जो पुराना फिल्म से निकाला गया एक गीत जिसमें और जा कर के खाने के खोज में बच्चों और निकलते हैं ना। बबली जी, आज का कार्यक्रम में आज संदेश अपने रखे कि किस किस प्रकार के और पात्रों में खाना बनाना उचित है, यानी कि ठीक होते हैं और ना ठीक होता भी। और शांता जी, इसमें हम लोगों भी कुछ और संदेश और भी और चीज़ों को और डाल दिया गया है कि जैसे कि सूरीनाम में हम लोगों किस प्रकार के पात्र में प्रयोग किया जाता था ना।
1: हाँ संजय जी, हाँ जो ऐसे ऐसे बात जो होते हैं ना तो हमको कैसे मारे जैतलैक मार दे कि सूरीनामों में कैसे रहा, और जो फ्रांसिस जो हम जाते हैं भी अन्य देश में तो वो पर भी हम देखते हैं तो ख्याल आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर भी आपके लिए आपके सामने उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
0: और ये जो अभी प्रश्न किया गया ना, पीतल, पीतल बोले जो कोपरा जो हम लोग के थाली होते थे ना सूरीनाम में, तो थाली में ज्यादा तादाद में कुछ बड़े लोग आते थे तो उसका खाना मिलता था उसमें ना,
1: पहले पहले में। हाँ,
0: पीतल के थाली का बोलते, थाली में खाने वाला का
1: जी।
0: बबली जी कुछ कहने वाले हैं?
2: मैं ये कह रही हूँ, मेरे को ध्यान आया कि हमारे घर में बड़े लोगों के लिए अलग से बर्तन होते थे। हमारी दादी, हमारी आजी के लिए पीतल का थाल, उनका गिलास, उनका चम्मच और कटोरी, उनमें खाते थे। और पापा और ताया जी के लिए, अरे दादा के लिए अलग से, और बच्चों के लिए थोड़े छोटे छोटे दूसरे बर्तन होते थे, हम लोग उसमें खाते थे।
0: तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
1: हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपन अपन रेखस भी होना चाहिए और उसमें जरूर से कुछ ना कुछ महत्व भी होगा ना।
2: हाँ, कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के लिए थोड़े अच्छे बर्तन, थाल।
1: हाँ,
2: थाल आप जानते हो कि बड़ा होता
1: हाँ,
2: है
1: हाँ।
2: और पापा और उनसे थोड़े छोटे, ताया जी तो उनके लिए थोड़ा और छोटा
1: हाँ,
2: बच्चे छोटे
1: तो और छोटा,
2: तो बच्चों के लिए और छोटा।
0: तो सुनने वालों, अगला गीत की ओर हम बढ़ेंगे और अगला गीत का बोल

0: प्यारे के निभाना सुनो जी। ओ मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, इस गीत के साथ आपको तो पता चल जाता है कि ज्योतिका प्रकाश यहाँ से संपूर्ण को होने को आ गई है। और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता के प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
1: दीवाना है तेरा,
0: के कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खिमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। साथ में और कनेक्ट हो गए थे हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। अगर कुछ टूटिया भी हो गए होंगे तो क्षमा कर देना। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अब ही आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से जाहिर नहीं करते।

0: अब सुन।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी, आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का हम। फ्रॉम द मूवी माय लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

0: बातें।
1: अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला शीशे का है मतवाले मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा'स फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ऐ गोल बदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार। जी हाँ सुनने वालों, गीत का बोल है काली तेरी चोटी है परांदा तेला लालनी, रूप की और आनी तू परांदे को संभालनी। फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चुट्टी है परांदा तेरा लाल नी फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक। इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तू तक तू तक तू तक तूतिया आई लव यू फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तूतक तूतक तूतक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे, मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए हैं सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूंट हम पी ले तो। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल अभी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: जिसका इंतजार है।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहां मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोला था। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, उसे लुकु सहंगा दो दू नंगायू। तो ऐसे मुर्गियां भी, ऐसे बकरियां भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवे यूना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करिए, पहले अपन करिए मित्रों, ठीक है। करते रहो जैसे जिए, चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे। हाँ।

मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानी मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिलीप स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त, बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रहली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे, ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है। मित्रों, इस भजन को सुनकर आप अपने जीवन को शायद

मित्रों कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए आप, पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दयोशीफायक हुआ वो लोग मित्रों। क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट था एक्सैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी, कनेक नित खवून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुक्ति करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मीने हो फरकीफें, तब मरो लेके, अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो, पता ना है, ये भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए, तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेंगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कल में फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे, तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ

हाथों में है, आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइन टू कॉम्स ऑफ यू फाउंड द लीफ दैट बेन यजेलव और ना कोई और। सत्य से मित्रों धन ध्यान का नाम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी फ्रॉड लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं? उसमें क्या बात है मित्रों? तो गलत काम मत करिए। नगो दूल्हा सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप देली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, न बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान हैम ऑफ दान हार यू लाओ, खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहाँ पहुंच लो है। आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कान काका लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि ये उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत है कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत हैं। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दी तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार कर रहे थे, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबकी कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोल ली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं, भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें हाँ कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे हैं। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देनहाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं, और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनील, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर स्वागत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

बस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की, देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह, जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अग्रीड सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कहते हैं 1 से 5 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

प्यार की हो गई जीत फिल्म जादू से, यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज़ में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त। और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन, नेखन तीन नेखन फाइव तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फाइव तक के शमशाद बेगम जी की आवाज में

tijd de song film Aarpaar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein sune starcast isme hai Shama Gurudat Shashikala aur Kumkum ji aur kehte hain kya kehte hain yahan se hum bata de aapko ki zindagi na kisi se नाराज होकर जियो जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो ना किसी को नाराज करके जियो जिंदगी बहुत छोटी है जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं चला जाता है पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर खुश होकर जियो

तस्वीरें नामी लोबी सुनाई हमको अंदर रगी डांस हॉल के आवाज में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।

बच के रहना दुनिया से मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स. जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त. हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं. इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी नहीं. कल तो दूर है, ये पल का भरोसा कभी नहीं. तो छोड़ो कल की बातें, जो आज है अभी में जी लो. वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया. जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया. जो अपना था वो पराया हो गया. जिंदगी की इस भीड़ में आज काफी इंसान अकेला हो गया. बात तो सही.

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज के, या एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है जो भी।

ये सांगर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए, ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है। जो हिम्मत नहीं हारते कभी, उन्हीं की उन्हें ही मंजिल पर, उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के जी लो मेरे।

Raymond Ramnarini kes awaj me sune hum. Someday I see you again. Waqt, waqt ke mor pe aisa, waqt ke mor par aisa waqt aaya hai. हाँ सुनने वालों के वक्त के मोड़ पर ऐसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबां पर आया है। ओह ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर, ना रोते थे हम कांटों के चुभने पर आज, हाँ आज ना जाने क्यों फूलों की खुशबू से रोना आया।

0: है कि हु खातत वहाँ पे सभी भाषा में। दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है, दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं। बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, अंधेरे में दिया मिला, अंधेरे में दिया मिला पर वो भी जला नहीं।
1: के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे। जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आप कितने भी होशियार हों, कितने भी चालाक हों, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है। हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा। दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है।

love for you goes on and on. मुझमें लाख बुराइयां होगी मगर मुझमें लाख बुराइयां होगी मगर मैंने किसी से अपने मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखा। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और जिंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए। आखिरी सांस तक ही साथ निभाना हो।

0: अभी आप सुन रहे थे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झूठता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आसिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, अलका याग्निक के साथ में। अभिजीत आपको सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।

बस दोस्तों, इस गीत को यहाँ से हमें रोकना पड़ता है, कारण कि हम इस वक्त स्टूडियो पे आ गया है। हाँ, आ गया है दोस्तों। दोस्तों आज है मंगलवार और मंगलवार के शुभ के प्रोग्राम है, क्वार्टर ऊपर 11 हो चुका है। शुभ आज है सितंबर का नई खनन त्वंत हो चुका है, मंगल है और आज है मंगलवार, नई खनन त्वंत सितंबर है। अभी आप लोगों ने यानी कि विजयंती का प्रोग्राम को सुना है। कुछ कारण बस आज हमारा कुली का साथी अनिल नहीं आ पाए हैं, इसलिए विजयंती का प्रोग्राम चलते थे सुबह से और यहां से हम अभी आपको देश विदेश के समाचार को सुनाएंगे। एक ही दम हम बढ़ते हैं दोस्तों अपना देश विदेश के समाचार जो हर हफ्ता हम आपको सुनाते हैं, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं।

ना जाने ऊंच नीच कला ना जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर कहते हैं तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को हम सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों एक ही दम हम बढ़ते हैं, जाते हैं अपना जूरी नाम की ओर, अपना मातृभूमि, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है और बहुतों के जन्म हुआ है। तो हम जाते भैया बोले फीसम फ्राई रेजन, तो बोलिए जॉनी कितना देश सरनाम मांगत रहा हॉलांत में, और फीसम फ्राई रेस हुए के बारे में चिजुआ लुक हो गए कि ना लुक भैले, ना ना ना चिजुआ ना लुक भैले फीस फ्राई रेस के बारे में है। ये है गाना भैया, गाना जहां से सूरीनाम के कफरी आइले है, तू जाने है स्लाफर ने एक तेज पे मिस्ट क्वाम फन गाना, तो वहां के सूरीनाम एंड गाना के फीसम फ्राई हुआ रेस हो सके है। तो गाना के प्रेसिडेंट जॉन द्रामानी महामा आइल है अंतमुत करी से, और प्रेसिडेंट जेनिफर खेरलेन सिमोन से, और बोले हैगा अपने बलांगस्टेले जोन गतोंद आन दे फीसम फ्रीस्टेलिंग फॉर होल्डर्स फान गवोने पासपोर्टन, अन डेफिनेटिवे ओवरइनकम्स दारओवर इस नोग नीट गमेल्ड। तो ये बात हुई भैया, गस्प्रेक फोन प्लांट न्यूयॉर्क में भइल है, 81 अलगमीन वर्गादरिंग जो रहा अमेरिका में फ्रीनेड स्टार्ट न्यूयॉर्क में, तो हुआ पे बोले कम्युनिकेशन दिस बोली से जेनिफर सिमोन से, और गाना के बड़कुआ से कि उसे बोलेगा फीसम फ्राई रही से कोई सके टूरिस्ट एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट गमकलक माकन सूरीनाम फ्रोक दानास आंदा फॉर बेटर लुक फॉरबिंडिंग एंड वेल verdere uitvoering geven aan de luchtvaartovereenkomst die beide landen al hebben ondertekend. तो भैया गाना के बाद चिथियाँ हुए हैं, बोले जो खुद सेक्टर जन है बोले इस इन बिल अस्तरेन फन सामन वर्किंग गाना बस के एक उम फन खरे के खुद इंडस्ट्री है एंड बेदर रखेरिंग इन विल द मोगलगीर इन फॉर सामन वर्किंग फर्दर ऑन्टविकलन में इनसे कंक्रीट प्रोजेक्ट जो है, बोले अब उकर अस्प्राक आउटफूरिंग अबे ना भइल है। उकर बाद में सिमोन बोले हंडल ऑन द वे इसके बारे में ऑन्टविकलिंग होगा और बढ़िया रिलैक्सी होगा गाना और सरनाम से, इसे प्लानिंग हो चुकल है। बैतलान से मिनिस्टर जो हम लोग के मेल्विन बौफा है और जामुएल उकुदेसो अबलाकावा फरकलारिंग टेकन करी से फॉर एट होस्टास होफ्टन और मिलिटार रूट कार्ड भैले 2026-29 में हेल्प प्रियोरिटी तपत पालन। तो ये बात है गाना के बारे में, दोनों देश व फ्रंट रोड लगे अफ्रीका और कराइबिस खबीत में नोवर में एलकार फरमिंदन सिमोन वेलदार फॉर स्टेलन महामा आज स्पेशल खास आइटनोरिक फॉर द कार्यक्रम टॉप दी फान 16-9 फरवरी Suriname me hoiga reparatie historische rechtvaardigheden hebben behoren eveneens tot de ontwerpen waarop bij de regering toe je maat Ghana Suriname ke bare mein Nederland ke visum ke bare mein na hai hamari janta to ye baat hai। सतदास सरनाम में भैया 15 गो रेक्टर सेगा जो उनका बोलेगा सिमोन हाथ मिलाई से, हाँ तो बोलिए कहे के हाथ मिलाई से जोनी, तो बतिया ई है हतवा मिलाई से फ्राई हेट हसेन इन कोमन ऑफ खुद नाम बस लेसिंग फन रेक्टर क्यों डीप इन ग्रेपन इन लीवन फन मेंशन में दी बोस काफे जेनिफर सिमोन मार्टा 28 सितंबर 15 गो यूरिस्टक के बईदक करी से प्लाट vervangende leden van Hof van Justitie, और बोले vanaf vandaag ligt het lot aan de anderen in de handen, hielp zij de groep। तब पलाइस में भैले प्रेसिडेंशियल पलाइस में भैले वहाँ पे अन्वेषक रहा अन फेपी रहा रूसलांत रहा जगरी रूसलांत रहा होफ प्रेसिडेंट रहा इवान रूसलबक्स रहा फैमिली लीडर फन बेइडकिंग कम्युनिकेशन दिन सूरीनाम सिमोन बना दुक्ति दात रेक्सर अम्तनार फेदर खात dan het werk van een jurist of juridische adviseur en bewuste keuze voor een zware verantwoordelijkheid। तो बहुत लंबा चौड़ा लिखल है भैया, लेकिन आपको हम
छोटा रूप में बताते हैं, नाज हरीशवर्धन किनारो अल्फें काजल और अजमीलोन हुआ आनवी शखरहा। तो दोस्तों तुलो ने जानो है सुरीनाम के कुआ के बारे में इतना लंबा चौड़ा का बोले है गा ओकर अंदर सुख होवे है हेफ तक मरल है। तो एक मार में बोले परमेश्वर ओवर अन होल्डिंग इन साक्विक दिवस्ताल लाथ है तो द बोधम अंदर सख्त वर्धन। परमेश्वर बोले इच्छा चाहे एकदम अंदर सुख होवे के न बोधम तक क्विक के चौराहे से कई गो सिपाही एक बारे में बन है दोस्तों। प्रोड्यूसी ब्यूरो खैर फ्लाइट में भाई लचीजुआ और एनडीपी फ्रक्सी ले रमीन परमेश्वर एक बारे में terughouden ba hij was hij wees erop dat ook in eerdere zaken verdachten zijn aangehouden waren onderzoeken volgens hem op de achtergrond raakten minister van landbouw visserij LVV waren in verschillende zaken verdachten onder wie directieleden zijn aangehouden en later weer vrijgelaten. Permeester hoopt dat een dergelijke verloop zich aan de kwestie rond ke bare mein to ek bare mein permeser bole hai ek chahe na bodam tak ondersoek kare ke ab ibc mein boli se dosto hanis manode jisusi en polisi ke verwees de zaak aanvankelijk door naar de pg maar stemde uiteindelijk in met de verstrekken van informatie. VHP parlementariër Mahinder Jogi merkte toen zelf op dat het nu tijd is dat de bewindsman gezien de vele schandalen binnen de korpspolitie Suriname wel de eer aan zich moet houden. Natuurlijk om de boeven van de kwik aan te houden, mensen. Toen je baant hè, kwik ke baare mein sath sath bhaiya jabar aage laga Suriname bahut garam hai dosto, bahut garmi hai aur garmi ke karan ho aage bhi bada zor lage hai. Grasbrand slaat over en legt onbewoonde houten woning in aas. Ego ghar raha lakdi ke aagi lagal hai ghaas mein aur jai ke ek ghar bhi jar gaya dosto. Ye baant hue hain Momplasir weg mein atwar ke baanchit hue hain bole ghaas mein aagi lagal aur ghaas jarat jarat inam ghar lage pahunch gaye jahan pe admi na rahat raha और वो घर जर के भस्म हो गए हैं। बतावे ऊपर फ्लाक तफन 8x7 meter घर वा रहा उतरा बड़का रहा और जर गए हैगा मोमप्लसीर वेख में। हमारी जनता बड़ा दुख के बात है जो आपको हम जरूर बता देना चाहते हैं। और आगे जाई भैया एक त्वेयन फिर तक यारक ओ तो चलावत रहा। अरे नहीं भल भैया मर गए पीके का बोले भैया पीके चलो जाने हैं और पीके बोले हैं मेर ही बाजुन एनडीपी के हैं बोले एनडीपी के लित मात स्कापू बोले धर दी से बोले काहे के पीके बोले मेर फर्ट्रैक मेर ही बा इस एनडीपी अन हील ख्रूत स्पिट स्क्वेट। हमने यानी भैया कितना बड़का स्पेस रहा रोमानो मेर हिबा भैया कहीं नहीं जहल काट चुका ले बाप को छोड़वा दे रहा असी बनानो दाऊद पीके फिट यामर की उनी कर गए है बोले आउट एनडीपी न्यू ब्राफो टेस्ट इज द पार्स पार्टी हियर में अन हील ग्रोथ स्पेस क्वाइट खराब बोले से ze zijn een hele grote spits kwijtgeraakt. Als ik de NDP was, dan zou ik naar een manier zoeken om dit recht te trekken. Men onderschat dat Merhiba het levende bewijs is van de resocialistische statie. We kennen zijn geschiedenis en we zien ook welke kant hij opgaat. En als iemand zo een stap maakt, dan nou een tof stap. Je mik drape, zei P.K. Bhaiya. तो ये बात है उकर बाप के कह रहे जहल में से छुड़वा दे रहा। दिस इज है अन स्पेस ऑफ व्हाट इज है एक्चुअली द एनडीपी कोऑर्डिनेटर जो रहा पोंडवेक के पीके स्टेल दैट है इन द सेल्फ रिसोर्ट ओ पॉलिटिक वेयर फॉर हिट अबोव हीव gedaan एंड सेल्फ ओ गेन हीव gezien heeft hoe hard Merhiba heeft gewerkt. In veel gevallen willen de mensen in de buurt alleen met Merhiba praten. Ja, betaalde commissaris RVS ke psychiatrische centrum Suriname. Hij werd hiervoor voorgedragen door de vakbond. Pique stelt dat wanneer een pleegzoon van Bouterse de partij verlaat waar hij is opgegroeid en wel geconcludeerd dat worden dan is niet klopt bij de NDP. Dus de ego Pique niet kan gaan. Ja, niet meer hiba.
टोपी के ये कर बारे में बड़ी लंबा चौड़ा बोले भैया, बोले वो स्पेच निकल गए एनडीपी के। देखो भैया लानफा लुविस होफ में दगा वल भैल है नानी, हाँ अख्तन फैफ तक या रख एखना रेस्ट जो नहींगा लख इन अख्तर कामन तो स्लापन सूतल लहा अपन कमरा में मीठा मीठा सपना देखा था नानी। और उतरे में भैया दगा वल भैल हुआ पे बताए गए है सुतले में फरकला नीच फंदस को उतर तक है बन खोर। बोले हम तो कुछ ना सुन ली बाटी लेकिन सिपाही के मेल्डिंग गई है। बोले द बवाकर फरकलार द कि 4:30 बजे और रोंग ओफर है एरफ मार्क्ट। बोले एगो घूमत रहा तरवेल है से अख्त द वूरिंग बफोन होर दे है ऑन द फोर से द मेरदर स्कूटन। बोले लिप ऑन मिडलक नार फोर ए सक ऑफ इन का अफ्तन एगो प्रोफेसर जा है दागो के। और बोले द बवाकर ओफर हंड कर पुलिसी एंड सक में 4 हुल्जन फॉर 9 मिलीमीटर दी है ऑफ स्ट्रेट हट गफोंडन। और मिंदर के सिपाही एकर बारे में अंडरसुक करे है हमारी जनता। तो ये सब बात है। अब देखो भैया एगो एक्स मिलिटेयर है सूरीनाम में फेफन से तक यार के पेंशनर देगा ओके पकड़ी से भैया अपन कलेन डॉक्टर के 15 बरिस के मिस ब्रेक करी से नानी। 21 सितंबर के गो एक्स मिलिटेयर है एर यही बोले लंग दूरक सेक्सुअल मिस ब्रेक करी से पर 15 यार के कलेन डॉक्टर के। और बतावे हैगा लड़किया जो है 15 बरिस के ओके सब दतरा गए ऑन सुख करी से। और बोले हैगा 4 खलाई सिपाही में गए ले और ओएम एक पकड़ के सुरजतिया के बन करी से। और बताए गई है 15 बरिस के लड़की के बोले एंकल वीकन खलीडन ऑन पोकिंग तो सेल्फ डोडिंग ऑन दर नाम दूर तेजक इनग्रेप कौन एरखर वार्डन चौड़िया मांगतरा सेल्फ मोर्ट सेल्फ करे मैं सब वो इनग्रेप करी से। और बताए गए ओके गए ले सिकन हैश में अब तेर फांसी पे। और बताए गए नो साकलंग में जिसे मस्कापलक बखलाइनिंग उपाय से ग्रोथ फादर एर ये वोंद ना दात हर मुदर ओनखफे एर यार खलीदन वास ओफरलीदन लड़किया के मैवा मर गया अ ग्रोथ फादर हुआ रहत रहा फोराफ खान अंडर सेल्फ डोनिंग पोकिंग हाथ द स्लाख तो फर हार सिचुएशन टू फर ट्रोट आन बकेंद फन हर ओफरलीदन मुदर ना आन लेडिंग फन द सेल्फ द वेर द पुलिस इन कस्काकल त मैवा के कोनो फ्रेंडेर रहा या कोई रहा ओके बताई से बिटी हुआ लड़कुआ 15 बरिस के की ओकर अने यानी कि ओपा ओके मिस ब्रेक कर वही मारे मांगे सेल्फ मोर्ट करे। भैया देखो 1 मिलियन के बांच चिटियां हुए हैं 1 मिलियन के सोना के गहना के वार्दे भाई घर में से चोरी भइल है सूरीनाम देश में हमारे प्यारे प्यारे जनता। और बांध है दाखरात वेख में दाखरात में रात के बोले अनखरोत हुफेल है सिरादन बैठ खमाक लिफोर्नो के सिपाही एकर बारे में गईल है एगो ट्वेयन फाइव तक यारख आन खत्रोफन से फरकलार दर्स रोन दर्तीन वास खान स्लापन de plaats werd ter plaatse werd de RG52-jarige aangetroffen. Ook wil ik jaren bij raad ke bolo jatra soete. Doei bij raad ke werd haar echtgenoot erbij wakker om naar het toilet jatra gaan. Or op een medicijn jatra, dawaai jatra pie kukroo me geil he. Ook deke kukroo me woonkamer me bolo sub over hoop heil he. Bolle de bak de controle ontdekte de vrouw dat een hoeveelheid sieraden die ze in de plastic bak had bewaard en in de keukenkast had verstopt verdwenen was. De totale economische waarde van de buit was geschat op 1 miljoen Surinaamse dollar. Bij onderzoek bleek dat een keukenraam was geforceerd. De indringer hebben zich via deze opening toegang tot de woning verschaft. Het pand is niet voorzien van die van eisen, maar beschikt wel van een camerasysteem. De politie van Livorno heeft de zaak in de handen, mensen. De op deko camera beeld per ke aile he ke na aile he nani. Op deko go Sora Briske. Jarige aangehouden voor zeden delict. Met bedleggerige vrouw, ik hoor het bij jou, bij mij, bij die meer.
नचलोल पावत्रा 60 यार के औरत भैया रेस डेक में बताए गए हैगा कि सिपाही पकड़ी से 27 सितंबर के 16 बरिस के को लौंडा के मेंदर यार है और इस सीजन दिलक कर रहा रेस डेक में एगो 60 यार एगो औरत जो बेट लिख रहा उ नचलोल पावत्रा बेनी में लेटला द बमोनर फन पान बत्रापते द verdachte bij thuisaankomst die slaapkamer mee ook er hulpbehoevende moeder ke ook er maaike de jongen bevond zich op dat moment gedeeltelijk ontkleed op het tafel toen de dochter alarm sloeg en hulp riep sloeg de verdachte direct op de vlucht de kapraapraau taarke londwa camera mee raha op het aangegeven onmiddellijk sipahige loke pakri se lokaliseer kari se aanhouding van een 16-jarige verdachte op een adres in nabije omgeving. तो भैया ये हु सब चीज होवे है बेमरिया औरत है और चल ना पावे है और जाए के 16 बरिस के लुंडा उकर संगे सीधे दिलक करे भैया कितना पाप दुनिया में हुई गे बिचारी चल ना पावे अब देखो उकर संगे का हुए है। अब देखो भैया एक औरत यहाँ देखो तू ही लड़का के छाता ले के डाम पे बा कपन्नी के है फ्राउ ना आन कोम से नीदरलैंड डकलोस एक है पालस इन सुरीनाम अख्तर खलात सब कुछ छोड़ के औरतिया है नीदरलैंड में और यहाँ डकलोस हुई गए है औरतिया भैया एक और सर नाम के औरत हैगा die ongeveer 2 maanden geleden met haar 7-jarige kind naar Nederland vertrok, is daar dakloos geraakt nadat haar relatie kort na aankomst eindigde. De vrouw die anoniem wil blijven om haar privé en die van haar familie te beschermen, belet dat ze in Suriname haar woning en werk achterliet voor de toekomst in Nederland. Te hier Ayla Baya, doei larka leke go aurat hega, auro bole hega, ego relatie raha oke, कॉर्डर लसिया जो दोन में तो के निकाल दी से घर में से कई औरतिया नाम पे औरतिया बोले अपन काम धंधा घर द्वार सब छोड़ के नीदरलैंड एली के हमारे को तुकोम्स बन जाए हिया और मोई अब बोले द फ्रॉ द इन एंड वेरक टू सुरीनाम एंड हैड दैट एन एगन वूनिंग से बसलोट ना नीदरलैंड टू वर्ट्रेकन ओम हर यंगस्टर के बेटर अंडरवाइज मोगलिकिटी टू बीडन एंड सेक बाय हर पार्टनर टू वेस्टर्न volgens haar waren vooraf afspraken gemaakt over gezamenlijke gezinsleven. Als je hier eilen bij jou te okker partner was niet aanwezig en enkele dagen later kreeg ze volgens haar te horen dat zij met haar kind kon terugkeren naar Suriname omdat hij niet verder wilde met de relatie. Dus ja, papa had geen zin meer in de relatie, maar waar we alles in Suriname hebben opgegeven en ons zij komen vestigen in Nederland voor een betere toekomst van vooral de jongste. Ja, het was een slag en het is nog steeds een slag, want dan word je op dat moment ook aan je lot overgelaten in een vreemd land. Maar die doekje baat hebben, ja, die ook haar partner ook in je choorde is. Op het eigen, sindsdien heeft de vrouw geen vaste verblijfplaats. Zij zegt op verschillende plekken te hebben geslapen, waaronder bij familieleden in een tuin en in de kraakpanden. Soms kon zij slechts 1 of 2 nachten ergens blijven. Ik ben dakloos, ik slaap hier en daar en overal. Ik heb buiten geslapen, toen was het weer nog een beetje aangenamer. Laat mij maar drukken, Apiorotia Kakariga. Vrouw werkt momenteel niet. Voor basisvoorzieningen waaronder voedsel maakt zij gebruik van hulp via de organisatie beschikbaar bij de Rode Kruis. De app de kooi over het keer hier kan te helpen krijgen of moet hij weer teruggaan naar Suriname. Dus dit zijn de zaken een beetje mensen die een miljoen hier aanwezen. Je partner zegt je graag, je partner bolle toch een maar dan ben je gewoon dakloos mensen. Dan moet je weer vertrekken op kontje he. एक बारे में यूस्ट चीज हम लोग न जाने ला हमारे जनता ये सब बात होता है। तो हम आप लोग को एक गीत को सुनाते हैं, जीवन से भरी तेरी आंखें।

थे किशोर कुमार का ये सॉन्ग थे जो आपको हमने सुना दिया। दोस्तों हम चलते हैं पेल पियाओ पियाओ सुमोहर जो के बांधे बोले हम झगड़ा ना खो जिला पोलतिकुआ में बोले बकी जल लड़ाई हुई तो बोले पीछे भी ना हट पार चालू हूर के पेल फोर्स इतर पौल सुमोहर जो बोले हैगा बोले ब्रेन स्वेग से बोले हम स्लो से प्रॉब्लम रहा।

We hebben wekelijks een quality top. Zij zomo hardjo. Ibar bo is interview met zomo hardjo. Bole hinga. Benadrukte. Bole quality medewerking. Kebare mee. Samenwerking gebaren mee. Zijn verlangen is dan alle politieke partijen het land samen te helpen. Toen ja, wat hij hebben VHP. Ze willen een klein land met 500 inwoners. Ja, wat hij heeft de PL-leider een probleem. Ook geen probleem te hebben met de oppositiepartij VHP. Het ging volgens hem eerder slecht om een meningsverschil tussen hem en Weilen om VHP voorzitter Chan Santoki te तो ये बातचीत है दोस्तों आप लोग के छोटा रूप में बता देखो भैया पिस्तौल के दगावल भैले बिरखर से और पिस्कोल्टू से भैया कराबू दो स्ट्रांत में शुक्रवार के कराबू दो स्ट्रांत में दगावल भैले ऐसी से ओसी पॉलिसी एंड बिरखर्स बोले हैगा पॉलिसी मान इस देश बोले हैगा इंस्पेक्टर कॉर्ट फॉर ऑफ इट एड्रेस अरिफेर्ड बोले हैगा एगो इंस्पेक्टर सिपाही जाए के एगो एड्रेस पे पहुंचल है और बतावेगा फन ऑमस्टैंडर्ड फरनाम है दैट अन मान सिख दार मेट अन फ्रेश फिर वापन ऑफहील्ड एंड दर्दन में द दूध बदरेग्ड तो ऐसे बातचीत होए लगल भैया उतरे में सिपाही भैया गेल पॉल्स होटल लेवे और हुआ देखेगा फरदाख्त दैट वर्कलेक ओकर पास एगो फ्रेश फिर वापन है और बोले है सो मेर दे हम हेड वापन ऑफ द फ्लोर द प्लास मा दिखा खेन खोर अन बफेल बोले बोली हम ओके पिस्तौल वा नीचे धरस को तो बोले उसे बोले ना मांगे धरे तब बोले ओम हम तो अंदर खदाख्तन ते ब्रेंगे लॉस द पॉलिसी मान फॉर फॉल्कस ट्वी वार्स्किंग दैट हैव वेल इंटिमिडेशन स्कोटन in een veilige richting. Die zetten daar op de vlucht in. En tijdens een vlucht zou hij meerdere schoten in de richting van de politie hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Dus je kan daar niet bij je te gelukken. Schoten wat kan op het de politie en verdachten op een dag wel kunnen. De verdachte wist uiteindelijk te ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoner bekend zijn en vermoedelijk nog in een nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. तब यहाँ ना बताइए से भैया क्यों पकड़ा ये कि ना पकड़ान है लेकिन खफलवा के बारे में ऐसे अब देखो भैया तीन गो आदमी के निकेरी के ओर झगड़ा भैल पड़ोसी में भैया मुर्गी मुर्गा के झगड़ा ना है पड़ोसी पड़ोसन के झगड़ा है और बताए गए है तीन मिला के सिपाही जाए के पकड़े से कसाफा वैख में कसाफा वैख निकेरी में भैया वीर ऋषि के बारे में बतावे है फैख पड़ते ही बोले सवेरे सवेरे भाई लेगा 24 तारीख के सितंबर में और बोले हैगा एगो सीफ ने फिर तक यार के एगो औरत चोटाई गए बहुत चोटाई गए उस झगड़ा में बोले ओमदा तुम बाजा बड़ा जोर बजे तब भैया द पुलिस सिर अनफेकलिक ना एन मेलिंग फॉर एक्सट्रीम ग्लेस ओवरलास्ट ऑफ इट बोविस्ट एड्रेस बोले इतना हम जाने ले भैया सिर नाम में बड़ा जोर जोर बाजा बजावे अंदर नामंतर प्लास इन म्यूजिक बॉक्स इन बसलाग ओम द रिस्ट हेयरस्टाइल सिपाही बॉक्स वा बसलाख कलेज की झगड़वा कमती हुए और बोले जब फर्ट्रैक भाई लेते ईम तो एस्कालेर हुई के झगड़वा की बोले अनफरबाल वोर्ड दे बेचते हैं जैसे बीर बोनस ontaarde in een massale vechtpartij op het erf. Op deze pahia bolaira. Op ze jara karito jeker boksua gaile tot de jabber mar bhaile bhaiya. Itra mar bhaile hai. Ki akademie sikan hai. Ispe na mungara medicine center me jai ke parge. Ego se ibne fir tak yaar ke aurat ke. Bahut chotai ge aurat ya. Aur dunu parte hua 25 tarikh september ke. On bodan of the policy bureau. Chahun sab ke awe ke. Na overlap van OM. Verdacht bhaiya. यह एक झोटला आदमी है सबके पकड़ के सिपाही बनकर इसे ओफर को फाइव बत्रोकन के भी सेना ने फरहोर ने नरहिस के खान तो झगड़ा वीरतिक भैया ये बाजा के कारण हुए आदमी बहुत जोर बाजा बजावे भाए और जब बाजा बजाइए तो सबके मुंह थोरो लगे है गांव में कितना बुढ़िया पुरानियन है तो उस सबके तो अच्छा ना लगे बाजा भैया और जब अच्छा ना लगेगा और सिपाही तो बैल कर ले अतुर बाजा ले गए तो जब बाजा ले गए है नानी तब तो झगड़वा हुई कस के झगड़वा हुई तो हमारी जनता आप लोग को अपना समाचार सुनाते ही रहेंगे कुछ बेटलान के बातचीत हम बता रहे भैया फेस के बातचीत है हुआ के स्टूडेंट क्लाक करी कि सात गो आदमी बोले

और मेरे यार शब्बा शब्बा शब्बा के दोस्तों, तो एक दो समाचार हम और सुनाएंगे, उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम को खत्म करें हैं। और ये भैया जेरल पालम के बातचीत हुए हैगा, भैया ना फ्लुख्त और खफगर इस वसुरी नाम और स्नाप जेरल पालम ऑफ न्यू इन ब्रासिलिय मार फ्राई है दूर्थ कोर्ट भैया एक कैसा बने खो जाता नीदरलैंड में कई बरिशन के जहल पायला भाग गल सुरीनाम में। और बताया जेरल लुइजियाना पालम दी इन 2017 uit de gevangenis van Duisburg land was op ontsnap bij Bhaggerhan op 26 september ke opnieuw uitbraak pleeg. Obele ditmaal wist de Nederlander met een medegevangene uit een Sousa gevangenis Rio se Rio de Janeiro se Bhaggerhan. Or bataye gaye hai dosto beiden werden daarna weer opgepakt. Satisan dosto ek do samachar hum China haalt bij VN uit naar Amerikaanse koers tegenover Iran en Cuba. Or bhaiya doei so SRD हर पलवार पलवार के जाता कटली से काटे भैया मान आन खाओद न बदराई के मेरे दो न फैमिली ऋषि ओवर 200 एज है रही के बांचित हो रहा है हमारे सुरीनाम के जनता। तो ये समाचार आज तक यहीं तक रहा, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भीर बात जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

ये भी रफीजा है बाशा जी कारवा में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। कार्यक्रम आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपी नायर के साज पर फिल्म साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आप सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तुली जी है लता जी फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं, आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश किए। VVV.FM.NL पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूं, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊं ये गीत, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में से, सॉरी कटी पतंग में से निकाल

जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकादार गीत है।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी। ये गीत आपको सुनाया गया, फिल्म है लाखों में एक, और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

की चाहत ना होती एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर ये टाइटल सॉन्ग नेकदीन द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं देखते हैं जी हाँ मैथी मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगदी एन सस्त 1961 का ये गीत

मैं तो मुकेश और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं वह है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंदे सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। आशा ये और रवि

कि आंख देखते हो सूरत तुम्हारी। रफ़ी साहब आशा जी आपको सुनाएं, कुर्बानी में से निकाले हैं, इंडिवर के लिखी हुई गीत, कल्याण जी आनंद जी के साज पर चला ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको आशा जी और भूपेंद्र की, जी हाँ, बप्पी लहरी के साज पर ये है।

वो प्यार के लिए जिसे हमने छोड़ दी है दुनिया। भूपेंद्र और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफी साहब और लता जी की आवाज़ में मदन मोहन के साज पर।

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नेगेटिव फिरेंसी शस्त्र का जी यानी कि फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेड ट्विंसेस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्य था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म नीला आकाश में से निकालकर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेस हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिन सहन शस्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांझ पर, आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए। गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के है।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकतिन सेशन सस्त का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

0: चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 तक फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ
1: रेशम की डोरी कहाँ जय हनिंदिया

Africa, Happy Station, Far Horn Hindustani Radio. काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 3 5 2 2 4 0 हमारा तार का नंबर है.

रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सही बात है, जब कुछ बात करना है तो कान में कीजिए या और करीब आके कीजिए। अगर आप दूर रह के बात करेंगे तो सभी लोग सुन लेंगे और सभी बातें अभी नहीं सुनाई देगा। तो फिल्म अमानत का सॉन्ग है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये सॉन्ग चलेंगे।

रहकर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। फिल्म फर्स्ट जो सैंपल सुनाम देश में पेश हुआ तो टियात्र द पारल इनका थ्रिलर दिखा रहे थे। आप जानते हैं टियात्र द पारल द लिक्स फिल्म का एजेंट था और त्यागराज जसोदरा नहीं नहीं त्यागराज पारल दलित फिल्म के नहीं था, त्यागराज जसोदरा था दलित फिल्म के और इंडिया ओवरसीज का फिल्मों त्यागराज पारल में पेश किया जाता था। तो त्यागराज पारल फिल्म फर्स्ट का ट्रेलर पेश करता था तो एक दो हफ्ता पेश किया, उसके बाद त्यागराज जसोदरा भी इसका ट्रेलर शुरुआत किया। तो दपाल का मालिक जो था सोचा है कैसे हो सकता, मैं तो इंडिया ओवरसीज का एजेंट हूँ और ये फिल्म इंडिया ओवरसीज का है, कैसे हो सकता है कि दलिक्स फिल्म का थिएटर जो है थिएटर जसोदरा ये फिल्म पेश करे। तो ये बात रेक्टर के सामने दोस्तों जज के सामने पेश किया गया। लोग को मालूम नहीं था कि उन दिनों में देवर प्रिंट में भी फिल्म बनते थे। तो ये फिल्म फर्स्ट देवर प्रिंट में बना और ये खियाना में ये फिल्म पेश होता था दलिक्स फिल्म का थिएटर में। तो थिएटर जसोदरा का जो एडवोकेट था वो बताया कि देखो देवर प्रिंट में है और ये फिल्म हम लोग अभी खरीदा है, तो ये फिल्म जसोदरा भी पेश करी। तो रेक्टर थिएटर जसोदरा का मालिक को कहा कि आप सही बात कहते हो, इन्हें कहा कि आप फिल्म पेश कर सकते। तो थिएटर द पारल का जो मालिक था वो तो ये बात हार गया। तो ये फिल्म दो थिएटर में पेश किया गया दोस्तों लगातार। और क्या बात सही बात ये है कि थिएटर जसोदरा न सिर्फ फिल्म फर्स्ट पेश किया, नहीं इसके साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है डबल फिल्म एक पैसा पे पेश किया। तो ज़्यादा से लोग जैसे जसोदरा में जाते थे और दपारन में उतना लोग नहीं जाते थे, इसलिए कि एक पैसा एक टिकट से दो फिल्म आपको देखने को मिलता था। यह है उन दिनों का कहानी। तो मैंने बताया फिल्म फर्स्ट का एक दो लाइन में एक दो बातें तो मैं चॉइस करके रखा हूँ। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानो, चाहे तू मानो या न मानो। फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग है जिसमें जितेंद्र एंड बबीता ने काम किया।

0: ना माने फिर भी एक चीज मांगता हो, एक चीज मांगता है हम तुमसे पहली बार।
1: एक चीज मांगते हैं।
2: क्या
0: चीज है?

दुर्गा पूजारी किशोर कुमार एंड आशा भोसले दोनों की मीठी आवाज़ों में सॉन्ग भी आपने सुना दोस्तों। जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, बात यह है कि बॉम्बे में 3 हफ्ता लगातार जितना सिनेमा है सभी सिनेमा में राजेंद्र कुमार का फिल्म सिर्फ पेश किया गया। तो बीच में राजेंद्र कुमार घर पर बैठा था और उसका धर्मपति बीबी का सहेली घर पर आया, तो ये दोनों बैठ कर बातचीत कर रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने कहा अपन बीबी से धर्मपत्नी से कि क्यों ना आप लोग चला जाता हो एक सिनेमा एक पिक्चर जाके देख लो घर पर बैठे हुए हो। तो उसका धर्मपत्नी जो है उसका बीबी जो है राजेंद्र कुमार के वो कहा कि कौन सिनेमा कहाँ पर हम जाए फिल्म देखे, सभी सिनेमा में तो तोर फिल्म आपका फिल्म पेश है। तो इन्हें मालूम नहीं था कि 3 हफ्ता लगातार सभी सिनेमा बॉम्बे में जो है सिर्फ इनका फिल्म पेश किया, तो वहीं से इसका पद्धी मिला, इसका नाम पड़ा जुबली कुमार। तो जुबली कुमार का एक दूसरा फिल्म गोरा और काला जिसमें हेमा मालिनी के साथ वो काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग लता एंड मुका, नाइट मुकेश एंड लाइटिंग गेल लता मंगेशकर दोनों के आवाज़ में सुनिए।

हमेशा धीरे धीरे बोलना, इसलिए कोई सुन ले आपका दिल का बात जो है। इतने कमजोर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

इसमें सुल्फे इन्हें देखकर जी रहे थे कभी। सेक्स बॉम्ब राजेश खन्ना। दोस्तों मुमताज काम के राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में दो रास्ते। मुमताज शुरुआत किया फिल्म में काम करने के, तो दारा सिंह के साथ लगभग 10 फिल्म बनाए मुमताज। तो जब दारा सिंह की फिल्म कम बने लगल तो मुमताज इंडिया ओवरसीज नहीं बॉलीवुड का जो फिल्म था इंडियन फिल्म्स, तो उसमें ये शुरुआत किया दूसरे फिल्म में काम करने को। तो लेकिन फिल्म जो डायरेक्टर थे इन्हें काम पे नहीं लेना चाहते, कहा कि ये तो दासी के साथ झगड़ा लड़ाई का फिल्म में काम किया और लव स्टोरी में ये काम नहीं कर पाएगा। फिर भी जब आया जोर तोर से फिल्मों में तो लोग घबरा गया दोस्तों। लगातार लगभग 6 या 7 फिल्म बनाया जो एक बॉक्स ऑफिस निकला। सभी फिल्मों से ये फिल्म भी दो रास्ते

एक हिट फिल्म था मुमताज का, लव इन टोक्यो 60 का स्पेशल। आप जानते हैं जॉय मुखर्जी का कमाल था उस समय। जॉय मुखर्जी आशा के साथ या आशा परेख के साथ फिल्म में काम किया। सायोनारा का मतलब क्या होता है दोस्तों?

है सयोनारा के बाद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, बात सही है या नहीं? किसी न किसी से कभी न कभी और कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब दिल है, छोटा सा दिल है, तो उन्हें देना पड़ेगा। जब दिल आप देंगे तो दूसरा दिल आपको मैसेज हो सके और बड़ा दिल आपको मिल जाएगा और प्यार भरा दिल मिल जाएगा। लेकिन जब दिल तू सैनिक रहे, दिल तू दबाए के रखिए, न बटिए तो कैसे चली भाई लोग, हम लोग चाहे बाट के खाए के। तो जब दिल है तो उसे दिल दिल से मिला कर देखो, आप जानते हैं, तो मिला ले उससे तो दिल, दो दिल जब मिल जाएगा तो दो दिल जब मिल जाएगा तो चार हो जाएगा दोस्तों। इन एंड इन इज फील, आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। फिल्म का काश्मीर के कली, श्यामी कपूर का कमाल था फिल्म में।

आप ही का हैप्पी सिचिल फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकसानी

Now, Mr. Tasif Bux. और तस्वीर बस आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स काउंटडाउन।

की बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉलो में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कर्मा अनु ताकि मिनो लोबी यू, हा सुमा ताकि मिनो लोबी यू, मिलो बी थ्रू।

मेक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

उन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

और हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वाह हिंदुस्तान रेडियो हमेशा आपके साथ। सॉन्ग में पाकिस्तानी सांगर अतीफ असलम के आवाज में आप सभी को ले पेश करूंगा। एंटीक हिंदी सॉन्ग कलेक्शन से मैं निकाल के आपके घर तक पहुंचाऊंगा। आप जहां पर भी रेडियो सुनते होंगे आपके कानों तक मैं पहुंचाऊंगा अतीफ असलम का सॉन्ग।

आतिफ असलम ये तो सिर्फ एक सानर लेकिन एक एक्टर भी पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फिल्मों में भी आतिफ असलम ने काम किया है। अभी एक दूसरा गीत मैं आतिफ असलम का आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ बाबुल सुप्रियो के सॉन्ग के ओर। और बाबुल सुप्रियो ये भी एक काफ़ी मशहूर गायक है, उसके आवाज़ में आप सुनेंगे मेरी तरह तुम।

बाबुल सप्रियो और साथियों की आवाज़ में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ अतीफ असलम के एल्बम के ओर, और अतीफ असलम 2005 में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया फिल्म सहर में एक नंबर पेश करने के लिए, और वो था ये गीत दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा, वो लम्हे वो बातें अतीफ असलम के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आसिफ असलम के आवाज में वो लम्हे वो बातें, अब की बार मैं चुन के रखा हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करके रखा हूँ अभिजीत का एक सॉन्ग। और अभिजीत ये प्लेबैक सिंगर से पहले ये एस डी बर्मन के साथ शो देते थे, शो पर स्टेज पर गाना गाते थे। उसके बाद ये नेखरी त्वेन तख तक में जैसराज फिल्म ने इन्हें ले लिया गया और ये वहाँ से शुरुआत किया अपन प्लेबैक सांगर का काम, वो भी बॉलीवुड फिल्मों में। वैसे प्लेबैक सांगर म्यूजिक कंपोनिस्ट और ऑन द नेमर भी अभिजीत है। तो अभिजीत की आवाज़ में एक दो सॉन्ग आप सुनेंगे।

अभिजीत गुलशन कुमार और एरदेव बर्मन के साथ शुरुआत किया दोस्तों, जैसे मैंने कहा तो किशोरदा का गीत गाते थे, उसके बाद अपन सिलेक्शन बॉलीवुड फिल्मों में पेश किया। एक बार फिर अभिजीत के मीठी आवाज में आप गीत सुनेंगे, अभिजीत भट्टाचार्या।

अब की बार दिल में हो तुम। बप्पी लहरी का म्यूजिक है और अरमान मालिक के आवाज में आप एक गीत को सुनेंगे। अरमान मालिक सॉन्ग राइटर, इंडिया से सांगर, म्यूजिकांत, प्रोड्यूसर और एक्टर। ये सिर्फ हिंदी में लेकिन तेलुगु, एंग्लिश, बंगाल, कनाडा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी अपन गीत पेश किया है। अरमान मालिक के आवाज़ में गीत सुनेंगे आप।

अब की बार दोस्तों तू कौन है, तेरा नाम क्या है? साधना सरगम एंड मिस्टर सानू या कुमार सानू, दोनों के आवाज में आप गीत सुनेंगे। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन, सभी खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया।

हूँ सीधे साधे राजन, आप सुन रहे फाहन हिंदुस्तान रेडियो राजन के साथ श्रिया घोषाल एंड पद्मश्री उदित नारायण। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। जब जमाने की सारी खुशी मिल गया दोस्तों, तो और जमाने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कमी नहीं है दुनिया में जब सारी खुशी मिल जाए तो।

में तुम मिले जिंदगी मिल गए अभी भी, किसी ने सीढ़ियों में तार किया कहा, पुराने गाने में जो मजा था अभी के गाने में कहा। दोस्तों लोग है जो पुराने गाना से मजा लूटते हैं, और लोग जो है वो नए गाने भी चाहते हैं, तो पुराने नए गाने सब चलाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी पुराने गाने चलाते हो, कभी कभी नया गाना आपके लिए पेश करता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपको मालूम है वो दिन वो तारीख आपको याद है या नहीं? आपको ज़रूर याद होगा। ये पहली बार जो मोहब्बत होता है वो हमेशा दिल में जाकर समा जाता है और कभी दिल से नहीं निकलता है। ये चीज़ मैं सोचता हूँ जैसे जैसे सभी के साथ होता है। दोस्तों पहली पहली बार मोहब्बत की है, किसी ने ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत एक चीज़ है जो हर एक इंसान एक बार जरूर किए होंगे, तो आप भी किए होंगे, मैं भी किया है, वो भी किया है।

न जाने ऊंच नीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर कहते हैं तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल।

0: जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को हम सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों एक ही दम हम बढ़ते हैं, जाते हैं अपना जूरी नाम की ओर, अपना मातृभूमि यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है और बहुतों के जन्म हुआ है। तो हम जाते भैया बोले फीसम फ्राई रेजन, तो बोलिए जॉनी कितना देश सरनाम मांगत रहा हॉलांत में, और फीसम फ्राई रईस हुए के बारे में चिजुआ लुक हो गए कि ना लुक भैले, ना ना ना चिजुआ ना लुक भैले फीस फ्राई राइस के बारे में है। ये है गाना भैया, गाना जहां से सुरीनाम के कफरी आए हैं, तू जाने है स्लाफर ने एक तेज पे मिस्टर क्वाम फन गाना, तो वहां के सुरीनाम एंड गाना के फीसम फ्राई वहां राइस हो सके हैं। तो गाना के प्रेसिडेंट जॉन द्रामानी महामा आयल है अंतमुद करी से, और प्रेसिडेंट जेनिफर खेरलेन सिमोन से, और बोले हैगा अपने बलांगस्टेले जोन गतोंद आन दे फीसम फ्रीस्टेलिंग फॉर होल्डर्स फान गोने पासपोर्टन, अन डेफिनेटिवे ओवरइनकम्स दारओवर इज नोग नीट गेमेल्ड। तो ये बात हुई भैया, गस्प्रेक फॉन प्लांट न्यूयॉर्क में भइल है, 81 अलगमेने वर्गादरिंग जो रहा अमेरिका में फ्रीनेड स्टार्ट न्यूयॉर्क में। तो हुआ पे बोले कम्युनिकेशन दिस बोले से जेनिफर सिमोन से, और गाना के बड़कुआ से कि उसे बोलेगा फीसम फ्राई रईस हो सके टूरिस्टन कल्चरल कॉन्टैक्टन गमकलक माकन सुरीनाम फ्रोक दानास आंदा फॉर बेटर लुक फॉरबिंडिंग एंड विल verdere uitvoering geven aan de luchtvaartovereenkomst die beide landen al hebben ondertekend. तो भैया गाना के बाद चिट्ठियां हुए है, बोले जो खुद सेक्टर जन है बोले इस इन बिल अस्तरेन फन सामन वर्किंग गाना बस के एक ओम फन खरे के खुद इंडस्ट्री एंड बेदर रखेरिंग इन विल द मोगलगेन फॉर सामन वर्किंग फर्दर ओंटविकलन में से कंक्रीट प्रोजेक्ट जो है बोले अब ओकर अस्प्राक आउटफोरिंग अब ना भइल है। ओकर बाद में सिमोन बोले हंडल ऑन द वे इसके बारे में ऑनटविकलिंग होगा और बढ़िया रिलैक्सी होगा गाना और सरनाम से, इसे प्लानिंग हो चुकल है। बैतलान से मिनिस्टर जो हम लोग के मेल्विन बौफा है और जामुएल उकुदेसो अबलाकावा आप लकवा अंज खसाम लोग फरकलारिंग टेकन करी से फॉर हेड होस्टास होफ्टन और मिलिटार रूट कार्ड भाई ने 2026 तो 29 में हेल्प प्रियोरिटी इतन तब पालन। तो ये बात है गाना के बारे में, दोनों देश व फ्रंट रोड लगे अफ्रीका और कराइबिस खबीत में नोवर में एल कार्ट फरमिंदन सिमोन वेल्डार फॉर स्टेलन महामा आज स्पेशल खास आइटनोरिक फॉर द कारिकम टॉप दी फन 16-19 फरवरी Suriname met me hoega. Reparatie, historische rechtvaardigheden hebben behoren eveneens tot de ontwerpen waarop bij de regering. Toen je maat in Ghana, Suriname, ke bare me, Nederland, ke visum, ke bare me, na en waar je janta. Toen je maat in. सतता सरनाम में भैया 15 गो रेक्टर सेगा जो उनका बोलेगा सिमोन हाथ मिलाई से। हाँ तो बोलिए कहे के हाथ मिलाई से जॉनी, तो बतिया ई है हतवा मिलाई से फ्रेहेट हसेन इन कोमन ऑफ खुद नाम बस लिसिंग फन रेक्टर क्यों दीप इन ग्रेपन इन लीफन फन मेंशन में दी बोस काफे जेनिफर सिमोन मार्टा 28 सितंबर 15 गो यूरिस्टक के बईदक करी से प्लाटवर्फंगेंडे लीडन फन हॉफ फन जुसी अब बोले फना फंडाग लिख्ट हेट लोट आन द अंदर इन द हंडन हिलप से द ग्रुप तब पलाइस में भैले प्रेसिडेंसी हिले पलाइस में भैले वहाँ पे अनुवेशक रहा अन फेपी रहा रूसलांत रहा जगरी रूसलांत रहा हॉफ प्रेसिडेंट रहा इवान रूसलबक्स रहा फैमिली लीडर फन बेइडकी कम्युनिकेशन दिन सुरीनाम सिमोन बना दूर के दाते रेक्सर अम्तनार फेर्दर खात dan het werk van een jurist of juridische adviseur en bewuste keuze voor een zware verantwoordelijkheid. तब बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले भैया, लेकिन आपको हम छोटा रूप में बताते हैं, नाज हरिश्वर्धन किनारो अल्फिन काजल और अजमीलोन हुआ आनवी शखरहा। तो दोस्तों तुलोन जानो है सुरीनाम के कुआ के बारे में, इतना लंबा चौड़ा का बोले है गा ओकर अंदर सुख होवे है हेफ्त तक मरल है। तो एक मार में बोले परमेश्वर ओवर अन होल्डिंग इन साक्विक दिवस्ताल लात है तो द बोधम अंदर सख्त वर्धन। परमेश्वर बोले इच्छा चाहे एकदम अंदर सख्त होवे के न बोधम तक क्विक के चौराहे से कई को सिपाही एक बारे में बन है दोस्तों। प्रोड्यूसी ब्यूरो खैर फ्लाइट में भाई लचीजुआ और एनडीपी फ्रक्सी लेदर रमीन परमेश्वर एक बारे में तुरक हाउदन बा है वास है वेस एरोब दत ओक इन इर्दर साकन फरदाखतन सेन आनखोहुदन वारना अंडरसुकन फॉलगेंस हम ऑफ द अख्तरग्रंड राक्तन। मिनिस्टर फॉर लैंडबाउ फिशरी एलवीवी के वारन इन फर्स्किलेंडर साकन फरदाखतन अंडर वी डायरेक्सी लेदन सेन आनखोहुदन एंड लाटर वी फ्रीगलाटन। परमेश्वर होप दत एन डायरेक्टलीके फरलूप सिख ऑन द क्वेस्टी रोंड के बारे में। तो एक बारे में परमेश्वर बोले है एक चाहिए न बोधम तक अंदर सुख करे के। अब इबीसी में बोली से दोस्तों हनीस मनोरे जिसी एंड पॉलिसी के फरवेज द साक अनफंकलक दौर नार द पीके मार स्टेम द आउटएलक इन में द फर्स्ट्रेकन फन इनफॉरमेशन। VHP parlementariër Mahinder Jogi merkte toen zelf op dat het nu tijd is dat de bewindsman gezien de vele schandalen binnen de korpspolitie Suriname wel de eer aan zich moet houden. Natuurlijk om de boeven van de kwik aan te houden mensen. ये बात है क्विक के बारे में। साथ ही साथ भैया जबर आगे लगा सरना में बहुत गर्म है दोस्तों, बहुत गर्मी है और गर्मी के कारण हुआ आगे भी बड़ा जोर लगे है। ख्रास ब्रांच लात ओवर ए लेफ ऑन बोंड हाउटन वोनिंग इन आस एगो घर रहा लकड़ी के आगे लगल है घास में और जाए के एक घर भी जर गए दोस्तों। ये बांध हुए हैं मोमप्लसीर वेख में अतवार के बातचीत हुए हैं। बोले घास में आगे लगल और घास जरत जरत इनम घर लगे पहुंच गए जहां पे आदमी ना रहत रहा और वो घर जर के भस्म हो गए हैं। बतावे ऊपर फ्लाक तफन अख बाई सेफ मीटर घर वा रहा उतरा बड़का रहा और जर गए हैगा मोमप्लसीर वेख में। हमारी जनता बड़ा दुख के बात है जो आप को हम जरूर बता देना चाहते हैं। तो और आगे जाए भैया एक त्वेयन फिर तक यारख ओ तो चलावत रहा। अरे देख भल भैया मर गए पीके का बोले भैया पीके ही चलो जाने हैं और पीके ही बोले है मेर ही बाजुन एनडीपी के है। बोले एनडीपी के लित मात स्कापू बोले धर दी से बोले काहे के पीके ही बोले मेर फर्ट्रैक मेर ही बा इस एनडीपी अन हील ख्रूत स्पिट स्क्वेट। हमने यानी भैया कितना बड़का स्पेस रहा रोमानो मेर ही बा भैया कहीं नहीं जहल काट चुका ले बाप को छोड़वा दे वे रहा असी बनानो दाऊद पीके फिट यामर की उनिकर गए है। बोले आउट एनडीपी nu bravo test is de paarse partij hiermee een hele grote spits kwijtgeraakt. Bolle ze zijn een hele grote spits kwijtgeraakt. Als ik de NDP was zou, dan zou ik naar een manier zoeken om dit recht te trekken. Men onderschat dat Merhiba het levende bewijs is van de resocialistatie. We kennen zijn geschiedenis en we zien ook welke kant hij opgaat. En als iemand zo een stap maakt, daarna een tof stap. Je mik drape, zei P.K. Bhaiya. तो ये बात है उकर बाप के कई रही जहल में से छोड़वा दे रहा। दिस इज है अन स्पेस ऑफ व्हाट इज है एकलक द एनडीपी कोऑर्डिनेटर जो रहा पौन बेक के पीके स्टेल दत है इन द सेल्फ द रिसोर्ट ओ पॉलिटिक वेयर फॉर हिट अबोव हीव गदान एंड सेल्फ ओ गेन हीव gezien heeft hoe hard Merhiba heeft gewerkt. In veel gevallen willen de mensen in de buurt alleen met Merhiba praten. Toen je betaalde commissaris RVS het psychiatrische centrum Suriname, hij werd hiervoor voorgedragen door de vakbond. Pique stelt dat wanneer een pleegzoon van Bouterse de partij verlaat waar hij is opgegroeid en wel geconcludeerd dat worden dat is niet klopt bij de NDP. Dus de ego pique niet kan gaan. Gaat hij aan P. Merhiba. टोपी के ये कर बारे में बड़ी लंबा चौड़ा बोले भैया, बोले वो स्पेच निकल गए एनडीपी के। देखो भैया लानफा लुविस होफ में दगा वल भैल है नानी, हाँ अख्तन फैफ तक या रख एखना रेस्ट जो नहींगा लख इन अख्तर कामन तो स्लापन सूतल लहा अपन कमरा में मीठा मीठा सपना देखा था नानी। और उतरे में भैया दगा वल भैल हुआ पे बताए गए है सुतले में फरकला नीच फंदस को उतर तक है बन खोर, बोले हम तो कुछ ना सुन ली बाटी लेकिन सिपाही के मेल्डिंग गई है, बोले दबावाकर फरकला द कि 4:30 और रंग ऊपर है एरफ मार्क्ट, बोले एगो घूमत रहा तरवेल है से अख्त द वूरिंग बफोन होर दे है अंदर फोर से द मेर्दर स्कूटन, बोले लिप ऑन मिडलक नर फोर ए सक ऑफ इने का अफ्तन एगो प्रोफेसर जा है दागो के, और बोले दबावाकर ओवर हंड कर पुलिसी एंड सक में 4 हुल्जन फॉर 9 मिलीमीटर दी है ऑफ स्ट्रेट हट गफंडन अमिंदर के सिपाही एकर बारे में अंडरसुक करे है हमारी जनता। तो ये सब बात है। अब देखो भैया एगो एक्स मिलिटेयर है सूरीनाम में फेफन से तक यार के पेंशनर देगा ओके पकड़ी से भैया अपन कलेन डॉक्टर के 15 बरिस के मिस ब्रेक करी से नानी 21 सितंबर के गो एक्स मिलिटेयर है एर यही बोले लंग दूरक सेक्सुअल मिस ब्रेक करी से पर 15 यार के कलेन डॉक्टर के और बतावे हैगा लड़किया जो है 15 बरिस के ओके सब दतरा गए लो ऑन द सुख करी से और बोले हैगा फोर खलाई सिपाही में गए ले और ओएम एक पकड़ के सुरजतिया के बन करी से और बताए गए 15 बरिस के लड़की के बोले एंकल वीकन खलीडन ऑन पोकिंग तो सेल्फ डूडिंग ऑन दर नाम दूर तेजक इनग्रेप कौन एरखर वार्डन चौड़िया मांगतरा सेल्फ मूर्त सेल्फ करे मैं सब वो इनग्रेप करी से और बताई गए ओके गए ले सिकन हिस में अब तेर फांसी पे और बताए गए नो साकलंग में जिसे मस्कापलक बखलाइनिंग उपाय से ग्रोथफादर एर ये वोंड ना दात हर मुदर ओनखफे एर यार खलीदन वास ओवरलीदन लड़किया के मैवा मर गए रहा ग्रोथफादर हुआ रहत रहा फोराफ खान अंडर सेल्फ डोडिंग पोकिंग हाथ दसलाख तो फर हार सिचुएशन टू फर ट्रोट आन बकेंड फन हार ओवर लीडन मुदर ना आन लीडिंग फन द सेल्फ द वर्ड द पुलिसी इन कस्काकल तो मायवा के कोनो फ्रिंडेर रहा या कोई रहा ओके बताई से बिटी हुआ लड़कुआ 15 बरिस के कि ओकर अने यानी कि ओपा ओके मिस ब्रेक कर उहिक मारे मांगे सेल्फ मोर्द करे। भैया देखो 1 मिलियन के बांच चिटियां हुए हैं 1 मिलियन के सोना के गहना के वार्दे भाई घर में से चोरी भइल है सूरीनाम देश में हमारे प्यारे प्यारे जनता। और बात है दाखरात वेख में दाखरात में रात के बोले अनखरोत हुफेल है सिरादन बैठ खमाक लिफोर्दो के सिपाही एकर बारे में गईल है एगो ट्वेयन फाइव तक यारख आन खत्रोफन से फरकलार दर्स रोन दर्तीन उन्वास खान स्लापन de plaats werd ter plaatse werd de RG52-jarige aangetroffen ook wil ik jaren bij raad ke bolo jatra soete doei bij raad ke werd haar echtgenoot erbij wakker om naar het toilet jatra gaan और अपन मेडिसिन जाता दवाई जाता पिए कुकरू में गए है और देखे कुकरू में वो उन कामर में बोले सब ओवर हो भइल है बोले द बक द कंट्रोल ऑन दैट द फ्रॉ दैट एंड हु फील है सीरा ने दी से इन द प्लास्टिक बक हर बवार एंड इन द कुकन कास हर फर्स्ट ऑफ फॉरडवेनर वाज द टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द बेट वाज geschat op 1 miljoen Surinaamse dollar. Bij onderzoek bleek dat een keukenraam was geforceerd. De indringer hebben zich via deze opening toegang tot de woning verschaft. Het pand is niet voorzien van die vereisen, maar beschikt wel van een camerasysteem. De politie van Livorno heeft de zaak in de handen, mensen. De abdeko camera beeld per ke ail he ke na ail he nani. Abdeko go sora briske. Sora briske. Jarige aangehouden voor zeden delict. Met bedleggerige vrouw, ik hoor het bij jou, bij Mara, bij die meer haar. चलोल पावत्रा 60 यार के औरत भैया रेस डेक में बताए गए हैगा कि सिपाही पकड़ी से 17 सितंबर के 16 बरिस के को लौंडा के मेंदर यार है और इस सीजन दिलक कर ले रहा रेस डेक में एगो 60 यार एगो औरत जो बेट लिख रख रहा उ न चलोल पावत्रा बेनी में लेटर ला द बमोनर फन पान बत्रापते द verdachte bij thuisaankomst ki slaapkamer mein ओकर हेल्प बहुफने मुदर के ओकर माई के द योंगन बफोन से ऑफ दैट मोमेंट गदेडलिक ऑनक्लेट ऑफ हे टाफल टू द डॉक्टर अलार्म स्लोक एंड हेल्प रिप स्लोक द verdachte डायरेक्ट ऑफ द फ्लेयर द कपड़ा अपड़ा उतार के लंडवा कमरा में रहा और बताए गएगा ऑन मिड लक्षिपाही गेलो के पकड़ी से लोकलाइजेर करी से आन होल्डिंग फॉर असिस्टेंट यार verdachte ऑफ एन एड्रेस इन नाबे ओमखिविंग तो भैया ये हु सब चीज होवे है बेमरिया औरत है और चल ना पावे है और जाए के 16 बरिस के लुंडा उकर संगे सीधे दिलक करे भैया कितना पाप दुनिया में हुई गे बिचारी चल ना पावे अब देखो उकर संगे का हुए है। अब देखो भैया एक औरत यहाँ देखो तू ही लड़का के छाता ले के डाम पे बा कफन्नी के है फ्राउ ना आन कोम से नीदरलैंड डकलोस एक है पॉलिस इन सुरीनाम अख्तर खलात सब कुछ छोड़ के औरतिया है नीदरलैंड में और यहाँ डकलोस हुई गई है औरतिया भैया एक और नाम के औरत हैगा die ongeveer 2 maanden geleden met haar 7-jarige kind naar Nederland vertrok, is daar dakloos geraakt nadat haar relatie kort na aankomst eindigde. De vrouw die anoniem wil blijven om haar privé en die van haar families te beschermen, wil dat ze in Suriname haar woning en werk achterliet voor de toekomst in Nederland. Tegen Ayla Baya, doei larka leek ego ouret hega, ouro bole hega, ego relatie raha oké. कॉर्डर लसिया जो दोन में तो के निकाल दी से घर में से कई औरतिया नाम पे औरतिया बोले अपन काम धंधा घर द्वार सब छोड़ के नीदरलैंड एली के हमारे को तुकोम्स बन जाए हिया और मोई अब बोले डे फ्रॉम वो डे इन एंड वेरेक्ट सुरीनाम एंड हाथ दार एन एकन वोनिंग से बसलू ना नीदरलैंड तो फर्ट्रेकन ओम हर यंगस्टर के बेहतर अंडरवाइज मुकल की दिन तबीदन एंड सेक बे हर पार्टनर तो फेस्टिगन फॉल्स हर वारन फोराफ afspraken gemaakt over gezamenlijke gezinsleven. Als je hier aile bijna te okker partner was niet aanwezig en enkele dagen later kreeg ze volgens haar te horen dat zij met haar kind kon terugkeren naar Suriname omdat hij niet verder wilde met de relatie. Dus ja, papa had geen zin meer in de relatie, maar waar we alles in Suriname hebben opgegeven en ons zij komen vestigen in Nederland voor een betere toekomst van vooral de jongste. Ja, het was een slag en het is nog steeds een slag, want dan word je op dat moment ook aan je lot overgelaten in een vreemd land. Maar die doekje baat hebben, ja, die ook haar partner ook in je choorde is. Op het eigen, sindsdien heeft de vrouw geen vaste verblijf was. Zij zegt op verschillende plekken te hebben geslapen, waaronder bij familieleden in een tuin en in de kraakpanden. Soms kon zij slechts 1 of 2 nachten ergens blijven. Ik ben dakloos, ik slaap hier en daar en overal. Ik heb buiten geslapen, toen was het weer nog een beetje aangenamer. Laat mij maar drukken, Apiorotia Kakariga. Vrouw werkt momenteel niet. Voor basisvoorzieningen waaronder voedsel maakt zij gebruik van hulp via de organisatie beschikbaar bij de Rode Kruis. De appeep de kooi over het keer. Hier kan land die help kreeg of moet hij weer teruggaan naar Suriname. Dus dit zijn de zaken een beetje mensen. Kie en Miloen hier aanwezig. Je partner ze jagra hoor. Je partner bolle toch en dan ben je gewoon dakloos mensen. Dan moet je weer vertrekken. Op koontje he. Ik er bare mee. Juiste chich hamlun na janila. Hamare janta. Ye sab baat hota hai. To ham aap log ko ek geet ko sunate hai. Jeevan se bhari teri aankhe.
1: Se bhari teri aankhe.

जीवन से भरी तेरी आंखें किशोर कुमार का ये सॉन्ग थे जो आपको हमने सुना दिया। दोस्तों हम चलते हैं पेल पियाओ पियाओ सुमोहर जो के बांधे बोले हम झगड़ा ना खो जिला पोलतिकुआ में बोले बकी जल लड़ाई हुई तो बोले पीछे भी ना हट पार चालू हूर के पेल फोर से तर पौल सुमोहर जो बोले हैगा बोले ब्रेंसवेग से बोले हम स्लो से प्रॉब्लम रहा माँ बोले हम झगड़ा ना खोजला बोले हम लोग बतियाली के हम लोग बड़का संगतिया बाटी भैया झल लड़ाई हुए लगे तो संगतिया ना कामे आवे है सब अपन अपन पढ़ते ही देखे है तो एनडीपी यानी कि पीएल के फोर से तो पॉल सुमोहर जो बोले हमसे रोनी ब्राइक से बोली हम लोग बिगी माती बाटी यार बोले जोन भल तोन भैल बोले हैगा हम लोग के कोवाली सी जोन है खुरूब जोन है और माँ हैगा एनडीपी एनपीएस तक बेप एन अबोप वह बर व्हीकल्स एंड क्वालिटी टॉप सही सो मोहर जो इबार बोले से इंटरव्यू में सो मोहर जो बोले हैगा बन्ना दृक्त बोले क्वालिटी मेड वर्किंग के बारे में सामान वर्किंग के बारे में सेल्फ लंगनिस दान आल पॉलिटिक पढ़ते हैं लंग सामान तैलपन तो यहाँ बताए गए हैं बोले फिर यहाँ पे इसे बोले कि एन क्लाइन लैंड में 500 इन्वोडर्स यहाँ बताए गए हैं का डे यह लेडर बोले अ प्रॉब्लम ook geen probleem te hebben met de oppositie partij VHP. Het ging volgens hem eerder slecht om een meningsverschil tussen hem en Weilen om VHP voorzitter Chan Santoki se. तो ये बातचीत है दोस्तों आप लोग के छोटा रूप में बता देखो भैया पिस्तौल के दगवल भैले बुरखर से और पिस्कोतू से भैया कराबू दो स्त्रांत में शुक्रवार के कराबू दो स्त्रांत में दगवल भैले ऐसी से ओसी पुलिसी एंड बुरखर्स बोले हैगा पुलिसी मान इस देश बोले इंस्पेक्टर कॉर्ट फॉर ऑफ इट एड्रेस अरिफेर बोले हैगा एगो इंस्पेक्टर सिपाही जाए के एगो एड्रेस पे पहुंचल है और बतावेगा फन ऑम स्टैंडर्ड फॉर नाम है दैट अन मान सिख दार मेट अन फेज फिर वापन ऑफ हील एंड दर्दन में द दूत बदरेगद तो ऐसे बातचीत हुए लगल भैया उतरे में सिपाही भैया गेल पॉल्स होटल लेवे और हुआ देखेगा फटदाख्त दत वर्कलक ओकर पास एगो फेज फिर वापन है और बोले है सो मेर दे हम हेड वापन ऑफ द फ्लोर द प्लास से मा दिखा खेन खोर अन बफेल बोले बोली हम ओके पिस्तौल वा नीचे धरस को तो बोले उसे बोले ना मांगे धरे तब बोले ओम हम तो अंदर खदाख्तन त ब्रेंग लॉस द पुलिसी मान फॉर फॉल्स ट्वी वार्स्किंग दैट हैव वेल इंटिमिडेशन स्कूल in een veilige richting. Die zetten daar op de vlucht in. En tijdens een vlucht zou hij meerdere scooten in de richting van de politie hebben gelost. Deze werd daarbij niet geraakt. Dus bij jeke dagen bij je te geloven scooten wakken legala. Omdat hij politie en verdachte op een dag welke leheen. De verdachte wist uiteindelijk te ontkomen en vluchtte de omgeving in. De verdachte zou volgens buurtbewoner bekend zijn en vermoedelijk nog in een nabije omgeving verkeren. Er werd politieassistentie ingeschakeld om naar de man uit te kijken. तब यहाँ ना बताइए से भैया क्यों पकड़ा ये कि ना पकड़ान है लेकिन खफलवा के बारे में ऐसे अब देखो भैया तीन गो आदमी के निकेरी के ओर झगड़ा भैल पड़ोसिन में भैया मुर्गी मुर्गा के झगड़ा ना है पड़ोसी पड़ोसन के झगड़ा है और बताए गए है तीन मिला के सिपाही जाए के पकड़े से कसाफा वैख में कसाफा वैख निकेरी में भैया बीर ऋषि के बारे में बतावे है फैक्ट पड़ते ही बोले सवेरे सवेरे भैल हैगा 24 तारीख के सितंबर में और बोले हैगा एगो सीफ ने फिर तक यार के एगो औरत चोटाई गए बहुत चोटाई गए उस झगड़ा में बोले ओमदा तुम बाजा बड़ा जोर बजे तब भैया द पुलिस सिर्फ अनफेकलक ना एन मेलिंग फॉर एक्सट्रीम खलाइस ओवरलास ऑफ एन बोविस्ट एड्रेस बोले इतना हम जाने भैया सिर नाम में बड़ा जोर जोर बाजा बजावे अंदर नामंतर प्लास इन म्यूजिक बॉक्स इन बसलाग ओम द रिस्ट हेयरस्टाइल सिपाही बॉक्स वा बस लख कलेस की झगड़वा कमती हुए और बोले जब फर्ट्रैक भाई लेते इन तो एस्कालेर हुए के झगड़वा की बोले अनफर बाल वोर्ड दे बेचने तो से बीट बोनस
ontaarde in een massale vechtpartij op het erf. Op deze pahia bolaira. Op oze jarakari to jeker boksua gaile to te jabar mar bhaile bhaiya. Itra mar bhaile ki akademi sikan huis me na mungara medicentrum me jai ke parge go se 41 jaar ke aurat ke. Bahut chotai ge aurat ya. Aur dunu parte hua 25 tarikh september ke. On boden op de politiebureau ke hang sab ke awe ke. Na overleg van de OM. Verdachte bhaiya hier ek jhotala admi hai. Sab ke pakad ke sipahi ban kari se overige 5 betrokken ke bhi. Zijn naar de verhoor en naar huis gegaan. Toen jhagda buurtik bhaiya hier baja ke karan hoe. Admi bahut jor baja bajawe bhai. Aur jab baja bajaiye to sab ke mohi thoro lage hai gaon ma kitna budhiya puraniyan hai. To us sab ke to achha na lage baja bhaiya. Aur jab achha na lagega. Aur sipahi to bel kar le atur baja lege. To jab baja lege hai nani tab to jhagdwa hui. Kas ke jhagdwa hui. तो हमारी जनता आप लोग को अपना समाचार सुनाते ही रहेंगे कुछ बैटलान के बाद चीज हम बता दें भैया फेस के बाद चीज है हुआ के स्टूडेंट क्लाक करी कि सात गो आदमी बोले है सेफ मानन आना फॉर मींद ग्रुप फॉर क्राफ्टिंग भइल भैया फेस में भइल है सात आदमी ग्रुप से फॉर क्राक करी यूनिवर्सिटी के बाद चीज हुए यहां पे फॉरमालक स्टूडेंट बतावे है यूनिवर्सिटी के अमेरिका के किसान को अनमी के अनक्लाक

infrastructuur veilig blijven. Iranke buitenlandse minister Abbas bolle mangerwaarke formeel van de VS verwachten over het voorspel van Teheran. John Straat Hormuz hebben kritische bolletje hij kolen te heropenen. Als voorwaarde om de blokkade op te heffen, eist Iran onder meer een 7-daagse staakt het vuren in regio, inclusief in Libanon. Zaterdag heeft Amerikaanse president Donald Trump het Iraanse voorstel al afgewezen. Trump heeft ook tegen Newsite gezegd dat de onderhandeling met Iran deze week vervolgd zullen worden. और हम लोग के तेल भैया ऑटो के तेल इतना महंगा हो जा है देखो कोंदर 33 रुपया के ओर जा भैया जो हम लोग बैतलांत में और महंगा सस्ता है और हम लोग के यहां इतना महंगा ऑटो के तेल है भाई तो ये बात है अमेरिका और ईरान के लड़ाई के बारे में अब देखो बैंकॉक में भैया बैंकॉक के गैल है बैंकॉक जोन गैल है भैया अब बैंकॉक में बोले 4 आदमी मर गए हैं नोटवेयर भैले बैंकॉक में तत ओवरस्ट्रोमिंग en dat heeft gevolgd tot 700.000 mensen zeggen de autoriteiten Ongeregeld het op openbaar leven staat het jaar admin zochten en veilig heen komen in noodvangcentrum. Toen we hake gouverneur John Hega, City Pur waarschuwt, kan hij zeggen, het waarke dat het een week zou kunnen duren. Toen je maand hebt Bangkok mee, dit is al een vakantie se ja hai. Aap sabke hum alert karte hai. Ki Bangkok mee, wahan par kya hua hai. Doden in Bangkok na ernstige noodweer ke baare mein. Hamare pyare pyare janta. चार कुत्ता मरल है नीदरलैंड की ओर हम जाले भैया चार गो कुत्ता भैया घूमत रहा वंडलिंग एगो परक रहा और ये हैगा प्लांटाशे इन स्किदम के बांचित हुए हैं स्किदम में गो प्लांटाशे हैं और वहां पे कुत्ता लेके चार मिला चारों कुत्ता मर गए भैया सिपाही एकर बारे में ऑन द सुक करे हैं और बोले हैं रीकनिंग में द होंडन इज हैवर खखीतन वार्डोर से 6 सेंट खवर्डन बोनस फॉरटेलन बोले है कुतवन बोले बीमार रहा बोले फिर मुस्तन ओवर गिवन छाट करत रहा दिया रे रहा सम सेल्फ में ब्लूट एंड अंदर बोने फरटेल दैट हर होन सिक वेयर ना दैट है इन एट पार्क विद अ ब्रोकन हाथ गखीतन Deze hond heeft het wel overleefd of de honden zijn vergiftig, is nog niet duidelijk mensen. Bakje Char Kutta Marge ook werd deze week een toxicologisch onderzoek gedaan. कुत्ता के बारे में हमारे जनता स्किदाम में भयल है प्लांटाशे स्किदाम के बातचीत हो रहेगा तो ये है नीदरलैंड का न्यूज हमारे जनता जो आपको बताना हमारा काम है नीदरलैंड एंड 5 अदर लंदन नीदरलैंड और 5 देश जो लेत है वेलन 100 मिलियार्डन यूरो स्क्रैपन आउट द न्यू ईयू बखरोटिंग Zonder flinke aanpassingen dreigen de landen hun steun aan de begroting in te trekken, schrijft de Financiële Times op basis van een brief van een regeringsleider. Ik erbaar in Nederland hebben Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk. Ik heb een brief ondertekend voor deze Europese begroting over de fundamentele hervormd moeten worden. Volgens de landen moet een duidelijke keuze worden gemaakt over waar het geld naartoe gaat. De bollega Chaudese willen meer geld voor defensie en innovatiebedrijven. Daarvoor moet volgens hen juist minder worden uitgegeven aan bijvoorbeeld landbouwsteun aan arme regio's. तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भौजी लोन

और मेरे यार शब्बा शब्बा शब्बा के दोस्तों, तो एक दो समाचार हम और सुनाएंगे, उसके बाद में हम अपना प्रोग्राम को खत्म करे है। और ये भैया जेरल पालम के बातचीत हुए हैगा, भैया ना फ्लुख्त और खफगर इस वस्तु नाम और स्नाप जेरल पालम ऑफ न्यू इन ब्रासिलिया मार फ्राई है दूर्थ कोर्ट भैया एक कैसा बने खो जाता नीदरलैंड में कई बरिशन के जहल पायला भाग गल सुरीनाम में। और बताए जेरल लुइजियाना पालम दी इन 2070 और गफंगनिस वन डाइसबर्ग लांग was op ontsnap bij Bhaggerhan. Op 26 september ke opnieuw uitbraak pleeg. Obele ditmaal wist de Nederlander met een medegevangene uit een Sousa gevangenis Rio de Janeiro se Bhaggerhan. Or betaai gae het dosto, beiden werden daarna weer opgepakt. Satisaan dosto, ek do samacharam, China haalt bij VN uit naar Amerikaanse koers tegenover Iran en Cuba. Or beya doei so SRD kar पलवार के जाता कटली से काटे भैया मान आन खाओद न बदराई के मेरे दो न फैमिली ऋषि ओफर तो ये होंदत एज है रही के बातचीत हो रहा है हमारे सुरीनाम के जनता। तो ये समाचार आज तक यहीं तक रहा, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार प्यार भीरे बात जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों। मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैल

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के, आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीन पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

दीवाना हुआ पागल नॉक्सेज द लवली सॉन्ग मेंजिन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूगनहॉफ

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरी कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

और बनवारील बनवारी बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले गीत के ओर जाते हैं और वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजो की और कहानी है फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही
0: सच्चे कहना
1: दो दिन

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते के ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

0: है कैसा है ये दीवाना दोस्तों रिमिक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं और हम आगे के बढ़ते हैं। जब ये लड़का दीवाना होता है तो पर्दा में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है दोस्तों, आओ चला जाए इस सॉन्ग को हम सब प्यार से रेडियो के माध्यम से सुना जाए। ओनली रिमिक्स और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है आशा भोसले के साथ में।
1: ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

और दोस्तों आज हम आप लोग को एक और सुनाते हैं और बॉलीवुड ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग हम आपको फिर सुनाते हैं।

और दोस्तों लाइव में प्रोग्राम लाइस्ट्रे ओनली झूमो नाचो गुनगुनाओ रिमिक्स ओल्ड इन गोल्ड। जितने लोग को ओरिजिनल पसंद है वो भी हम जरूर चलाते हैं, लेकिन कितने लोग के रिमिक्स सॉन्ग भी और यानी के पसंद है। तो आज आप लोग को हम ओल्ड इन गोल्ड रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे। तो रिमिक्स सॉन्ग के मूड में है तो अब क्या है सुना जाए, किशोर जी आपको क्या सुनाते हैं। किशोर कुमार निखंती तख्त का हिंदी सॉन्ग रीमिक्स हम आप लोग को सुनाएंगे। किशोर कुमार का आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

मैं आई आई आई और भी आ जाना। और फूल की शहर में एक घर अपना है दोस्तों, उसके बाद हम भिन्न चलते ही आओ सुना जाए क्या लेकर हम आपके लिए आए हैं हमारे लवर्स के लिए।

और क्या हुआ तेरा वादा भी लेकर हम आप लोग को आएंगे, लेकिन क्या हुआ वादा से पहले जॉनी आपको और कुछ सुनाना चाहते हैं और आपको हमें यही आशा उम्मीद है। एक बैंड खून जेकर मैन से दर्जली ओग जो फिल खनी थे वात वात ऑफ दैट मोमेंट, जैसे हम यहाँ पे कूद कूद के और नाच नाच के खनीट करील मैन से एंड येली उगदार है एंड आल्सो दैट इज नाउ खनीट एयर वन।

और ओ जब हम भी जवां होगे तुम भी जवां होगे तो पता नहीं चलेगा कि आप आमस्टरडम में होगा या सूरीनाम में होगा। जब बचपन के प्यार जगते हैं और दोनों सोचते हैं जब हम दोनों जवां होगे तब मालूम नहीं कि हम कहां होगे, कोई रोटरडम में होगे, कोई आमस्टरडम में, लेकिन कोई भी सूरीनाम भी हो सकता है दोस्तों। और हमारा एंड कहाँ होगा दोस्तों इसको भी किसी को पता नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा सॉन्ग से आप लोग को आज सेवा फिर से करते हैं।

क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। अब झूमो नाचो गाओ गुनगुनाओ जो भी चाहे और करो। देसली जिसका ये अलेन बे रेडियो फाहुन और बे अलेन बे रेडियो फाहुन खनिज बेस्ट लाइफ स्टार्स। इसके बाद और आगे हम चलते हैं।

शांति। तो दोस्तों हमारे उम्र के लोगों और दिल ना लगाना हमारे यारो, प्यार करना जरूर करना। तो हम चलते हैं एक आउट जोन की ओर, वो क्या है

0: और मुझे भी चलते जाना है। और दोस्तों नौका लास्ट नंबर,
1: कबूतर
0: और कबूतर जा के मतलब ना है कि हम चला जाएगा। अभी इसके बाद, इस सॉन्ग के बाद में हम रेक्लाम चलाएंगे, और रेक्लाम के बाद में दखान द लाइन उपमैन से दमोख यली खान बेले ऑफ रेडियो फोन ऑफ टेलीफोन नंबर 073-622-0777 मोगen jullie gaan bellen om een nummer aan te vragen, maar dat doen jullie pas na de reclame. पहले इस गाना को, इस गीत को हम सुना जाए।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो कहते हैं यारो प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते हैं, कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

आंब की आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

और आशा भोसले किशोर कुमार का गाया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाती है कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तबाह कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

आती है तो शक ना कर मेरी जस बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की मरते इंसान के लिए, बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठी, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया। तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753563 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

तप प्रभावधीन, सफेद चीजें गुफा, तारों का समूह, मेघमंडल, स्फटिक मणि, संगमरमर, दिव्य पदार्थ, फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभावधीन, ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान मुक्त संचार उड़ना। पित्त प्रभावधीन, आग, पीली पृथ्वी, तक्षिण शस्त्र, जलती दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना। दो स्वप्नों का परिवार।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुःस्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचिमूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10,00,000 जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं, वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित्त प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित। पुरुषोचित प्राकृतिक, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंगों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है, कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की अवस्था होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी स्वप्न सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहाँ सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय पर स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं।

0: आधा।
1: हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा, उसका परिणाम में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गुण रहस्य प्रकट करने की समर्था स्वप्नों में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। सर्वगस आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। यह स्वर्गस आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि कई बार सपने हमें आते हैं, जो कई बार घटना घटने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत भी मिल जाता है। हमारी अंतरात्मा हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान ना दें, उन्हें समझने का प्रयास ना करें, तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक सिद्ध साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हम स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। सुनने वालों, वो तो हमें मालूम ही है कि सबको अपना स्वभाव, अपने आदतें पता होती हैं, और कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जान सकता है तो वो होती है माँ। माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों की आदतें कैसी हैं। इसलिए हमारे सपने ही हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिस्र में बने मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता था। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते थे। जब सपने देखने का समय आता था तो वे सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते थे। सोते सोते वे सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है।

मोती युग सीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में तो केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। सुनने वालों, जैसे हम समुद्र में जाएं या कहीं भी जाएं, वहाँ पर ऊपर ऊपर मछली मिलेगी। गहराई में जाएंगे तभी हमें सीप के मोती मिलेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा सपना भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का समाधान और सामना करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे यह कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हों, परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले किसी को भी मिले, परंतु विजय तो मानवता की ही होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत है और मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है, हमारा अस्तित्व है, और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़कर उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है कि सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध या महान पिता या स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है।

सुनने वालों, ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सबका हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, सपनों की गूढ़ परिभाषा। इनमें शब्दों व आवाज की जगह दृश्यों, चिन्हों व लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिविक व अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों व संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का फरीक होता है, परंतु यह मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं व मानते हैं, और हमारी भावनाओं का रात को ही स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, चेतन मन कहता है।

मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अस्वर हो सो साधु कोई एक। जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों व आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे, प्रायः दिन के समय भी। कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संगणक अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने व मदद मांगनी पड़ती है।

बौद्ध धर्म तथा स्वपन। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वार्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वप्न है, केवल एक स्वप्न। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त एक धारा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता या आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें तथा हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्रायः हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। अगली बार मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी और सपनों के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी मिलेगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी, आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी, जिनका दिल उदास है उसके उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: श्री राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी, ये बताइए कि क्या आज का विषय है?
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में, तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में। तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार, ये पितर का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है, तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है, पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखे हैं। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है, लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते, पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है, यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, वृत पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है। और यहाँ तक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन, यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता है उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, तो उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृ पक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है, खाता पंडित पंडा।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना, यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञ लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे,
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं, डरना नहीं है पितरों कार्य करने।
1: वो कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है।
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: नहीं, इसमें पितर का बात नहीं,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत, इसका अंतर क्या है? तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांद्रा जी,
1: आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो
1: भूल कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरी, कष्ट करी सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं,
0: आप हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण है वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीजें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी,
0: हाँ,
2: तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्व श्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता
0: है। कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है तो उससे,
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल और जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे, यदि पितृ पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती
3: है। अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त हुए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो आप हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं, आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे ये ही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पित्र पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दी है हम सबके लिए।
3: हाँ, सांद्रा जी तो
4: तैयारी करके है,
3: सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़ेंगे।
3: हाँ, जरूर। आगे के जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा
2: शनि देव के वाहन।
3: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के हम सबके जरूर समय दिए है कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
3: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
0: हाँ जी।
3: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे न्यूज की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

0: बाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की न्यूज़ सब लोगों ने सुना, कॉमर्शियल भी सुना, और हमारी बात चल रही थी कौवा पे, तो अब कौवा से बात खत्म करके हंस की ओर चलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी,
0: जी
1: ऐसा कौवा तो होलान देश में है ना?
0: हाँ खूब।
1: पर सांद्रा जी, आपको तो पता होगा सूरीनाम में कौवा है कि या नहीं?
2: नहीं, कौवा नहीं है, कोयल है। नहीं नहीं नहीं, कोयल
1: नहीं, कोयल कोई और होता है, कौवा कुछ और होता है ना।
0: कौवा बड़ा होता है, कोयल छोटी होती है। कोयल की आवाज सुरीली होती है, कौवा की काऊ काऊ होती है।
2: कौवा बहुत काऊ काऊ करता है,
1: कौवा काऊ काऊ करता है,
0: काला कौवा काऊ काऊ करे।
1: दोस्तों, ये बात है कि शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। आत्मा जब धर्म से पवित्र होता है तो राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आगे क्या संदेश है ये तो सुना दो।
0: आगे का संदेश

0: उसकी चोंच में ऐसी व्यवस्था है।
1: हाँ, पर हंस में फर्श के लिए ना,
0: हंस सरस्वती का वाहन भी है।
1: हाँ हाँ, पर जो हंस हम यहाँ पे देखते हैं हॉलैंड में, वो वाला नहीं
2: नहीं।
1: अगर उसका पहचान आप जानना चाहते हो तो उसका चोंच देखना।
0: हाँ, चोंच से पहचान होती।
1: हंस का चोंच जो है वो लाल होता है, जो यहाँ वाली हैगा वो सब ओराये हैं। तो असली हंस जो है उसका चोंच लाल होता है। वो हंस के बात हम कर रहे हैं।
0: हाँ, वही हंस है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती है। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, या फिर वह देवलोक चली जाती है। हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों।
1: और ये हंस जहाँ तक मेरे ख्याल है ये सिर्फ क्षीर सागर में होता है।
0: भगवान गरुड़ विष्णु के वाहन हैं और भगवान गरुड़ के नाम से ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाद के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा कोंच या सारस नाम का भी लिया जाता है, जो पितृपक्ष में एक कोंच और सारस का नाम भी लिया जाता है, उनको भी वो अन्न देना चाहिए उस समय।
3: तो राजेंद्र जी, कोंच ये पक्षी है या जानवर है क्या?
0: पक्षी है।
3: एक पक्षी?
0: हाँ, एक सारस होता है जो ऊपर लाइन से चलते हैं, और एक क्रॉंच, क्रॉंच नहीं, वो क्रॉंच वो तो शंख।
2: हाँ, शंख,
0: शंख उसमें वो क्रॉंच।
2: हाँ, शंख बोले।
0: तो जो शंख जिससे निकलता है वो तो रहता है समुद्र में, मिलता है नदी में नहीं मिलता। तो इस प्रकार तीन पशुओं की भी बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम शांता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं नीदरलैंड में?
1: जरूर। तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दे थोड़ा डच में, नीदरलैंड भाषा में, कि पितर पक्ष क्या होता है और किस लिए है, और तो पता है तो यहाँ से हम शुरू कर दे।
0: हाँ, जरूर।
1: पितर पक्ष यार लक्षद दूध फर एरिंग तेजस द डोंकर हेल फॉर द मंथ सितंबर अक्टूबर वॉर द door sommige hindoes de dodenherdag. Deze herdenking wordt Pritra Shraad genoemd. Dit wil zeggen het offerfeest voor de gestorven voorouders. Pitra is voorouder en Paksh is de donkere maandhelft. Dat deel van de maanmaand waarin de maan afneemt. Gedurende 15 dagen wordt er aan degene die de doden herdenken een tilangeli gegeven. Dat is een offerande bestaande uit water, til. De til is sesamzaad met bloemen op een soort gras, yaniki kusha gras. Deze offerande wordt in de hand gegoten, waarbij beide handen tegen elkaar worden gehouden. Anjali, de dubbel handvol. De tilangeli wordt dan op een gewijde plaats op het erf geplengd of uitgegoten. De gestorvenen worden herdacht om hun positie in de dodenrijk te verbeteren en voor hun welzijn en geluk al daar. Tevens smeekt men zegen van de overledenen af voor de nabestaanden voor geluk, welzijn. De plaats van de gestorvenen in het dodenrijk vertegenwoordigt een heel oud geloof dat in feite in alle natuurgodsdiensten voorkomt. De overledenen gaan naar het rijk van Yam. De eerste overledene na de schepping van de mens en sindsdien de vorst van het dodenrijk, oftewel Yamraj. Het welzijn van alle overledenen.